0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा

की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी है और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।

सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और नवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र के बारे में। तब तक सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

जय माता की। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। आज का दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। इस दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। सबसे पहले स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाएं, तभी आप पूजा के लिए आगे बढ़ें। अब माता रानी को धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुम्हड़ा, फल और सूखे मेवे इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद माँ कूष्मांडा को हलवे और दही का भोग लगाएं, फिर इसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। माँ दुर्गा का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। पूजा के अंत में माँ की आरती करें और माँ कूष्मांडा की पूजा करते समय या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः मंत्र का जाप करने से माता रानी के प्रसन्न होने की मान्यता है। चलिए सुनते हैं गीत संगीतमय भजन। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनू शारदा 90.8 FM। आज का दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। आज के इस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्णन करते हैं माँ के बारे में। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वैसे तो हम कुछ कह नहीं सकते माँ के बारे में। माँ के बारे में हम क्या कहें, हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, हमारी लेखनी कम पड़ जाएगी। लेकिन जो हमने सुना है, देखा है, वही हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है। माँ दुर्गा की सवारी सिंह है। काशी में देवी के प्रकट होने की कथा राजा सुबाहु से जुड़ी हुई है, ऐसी मान्यता है। चलिए अब बात करते हैं इनके शुभ रंग के बारे में। नवरात्रि के 4थे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

जय माता की। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। आज का दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। आज के इस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए अब बात करते हैं देवी के 9 स्वरूप के बारे में। प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री, द्वितीय है ब्रह्मचारिणी, तृतीय है चंद्रघंटा, चतुर्थ है कूष्मांडा देवी, पंचम देवी है स्कंद माता, छठी देवी है कात्यायनी देवी, सप्तमी देवी को पूजा की जाती है कालरात्रि मैया की, और फिर नवमी को महागौरी की। तो इसी तरीके से नवरात्रों का दिन गुजरता है। हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि इन नवरात्रों में हमें हिम्मत दे, क्योंकि सच बात तो यह है कि पूरे दिन व्रत रखना बहुत बड़ी एक तपस्या है, और इस दौरान तन की शुद्धि, मन की शुद्धि का भी विशेष तौर पर ख्याल रखना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, खान पान का ध्यान रखना होता है। और यही आचरण अगर हम अपने जीवन में सदा अपना ले तो निश्चित तौर पर माता रानी हमारा भला करेंगे। और जीवन का सार तो यही है कि ना बुरा कहो ना बुरा सुनो, बस दूसरों का भला करते जाओ। और देखिए माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर, हमारे ऊपर प्रसन्न होंगी। नवरात्रे आपके शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलते हैं अगले भजन की तरफ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जय माता दी। मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। इन नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज का दिन कूष्मांडा देवी का है। आज के दिन कूष्मांडा देवी के बारे में हमने चर्चा की। माता रानी सबका भला करें, हम सबको हिम्मत दें, हम सब अच्छा करें, सब मार्ग पर चलें, ऐसी हमारी ईश्वर से माता रानी से प्रार्थना है। इस श्लोक के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। या देवी सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र के साथ मैं अब आपसे अनुमति लेता हूं। अपना ख्याल रखिए। आने वाले नवरात्रि आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता की।

0: सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।
1: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें, अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।

0: चार्दा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की। मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें, बहुत कुछ खास होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जनाब अली, ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगता है? 01204060206025 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं, यानी कि शहर का STD कोड लगाना ना भूलेगा, 120 नंबर हो जाता है 4060205, इसके जरिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और कभी लगता है कि एक मुलाकात बहुत जरूरी है तो आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। कहा जाता है, वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर। शारदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय और दिल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जब लोग आते हैं तो हम उनसे बेझिझक मुलाकात करते हैं, और मुलाकात का जो सिलसिला है लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान है। कौन है, कहाँ से है, बड़े ही खूबसूरत दोस्त है, उनसे हम बातें करेंगे, बताएंगे जरूर कि वो कौन है। सो कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जब कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है वो सारी बातें हम यहाँ से कर रहे होते हैं, जैसे कि बिंदास सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें, डॉक्टर्स की बातें, बहुत कुछ खास हम लेकर आ रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए, जब बिंदास बातों का जिक्र किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ने पढ़ाने की बातें होंगी और बातें होंगी स्टूडेंट्स के बारे में, बातें होंगी जिंदगी को किस तरीके से बिंदास जिया जा सकता है। तो खैर, फाइनली आज हमारे साथ हमारी एलुमनाई जुड़ रही हैं, जिनका बड़ा ही खूबसूरत नाम है, नाम मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। 2018 पोस्ट बीएससी के आप पास आउट स्टूडेंट हैं और इनका जो कोर्स कंप्लीट हुआ 2020 में, 2020 में ये कोर्स कंप्लीट हुआ और ये अपने देश बांग्लादेश चली गई और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में आप वर्किंग वुमेन हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ इसके बाद कुछ प्लान है इनके। और कोविड के समय की अगर हम बात करें तो कोविड के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फाइनली ज्यादा इंतजार नहीं करा था, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शारदा विश्वविद्यालय की एलुमनाई शहजादी, वाकई बहुत ही खूबसूरत नाम है शहजादी आपका, बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल।
1: थैंक यू सो मच, आई एम शहजादी, आई केम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट विद यू।
0: मैं भी बहुत खुश हूँ शहजादी, क्योंकि जब मैंने सुना कि शहजादी आ रही है, बांग्लादेश की शहजादी आ रही है, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ माधवी जुड़ रही हैं, जो कि SNSR फैकल्टी एलुमनाई कोऑर्डिनेटर हैं शारदा विश्वविद्यालय में। जब वो मुझे बता रही थी कि शहजादी आ रही है, तो मेरा सवाल ये था कि ये कहाँ की शहजादी है?
1: बांग्लादेश
0: की शहजादी है। तो माधवी मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: मुझे बताइए कि ये जो आपने एलुमनाई मीट के बारे में डिस्कशन किया या जो सोचा, इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से काम कर रही होती हैं?
1: सर, जैसे शारदा विश्वविद्यालय हर साल हम स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, यहाँ पर पढ़े, एक्सपीरियंस ले, ग्लोबल एक्सपीरियंस ले। जब वो पढ़ के अपना कोर्स कम्प्लीट करके यहाँ से जाते हैं तो हम एक एलुमनाई कनेक्ट करते हैं उनसे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके यहाँ की जो उन्होंने जो एक ज्ञान एक गुरुकुल में जो एक्सपीरियंस किया है वो कैसे वर्ल्ड वाइड उस नॉलेज को सोसाइटी के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं और क्या क्या अचीवमेंट ली है और शारदा विश्वविद्यालय का नाम कैसे आगे लेकर गए हैं, बिकॉज दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी।
0: एब्सोल्युटली राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। सो थैंक यू सो मच माधवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी रही और आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि किस तरीके से इस प्लानिंग के तहत आप आगे बढ़ रही हैं। शहजादी, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं बातों का जो सिलसिला है लगातार आपके साथ जारी रहेगा। सो लिसनर्स, कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ रही हैं शहजादी, जो कि बांग्लादेश से हैं और 2018 की आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट हैं, 2020 में इनका कोर्स यहां से कंप्लीट हुआ और वर्तमान समय में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप प्रेसिडेंट क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की आप प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ फाउंडर भी हैं। इनसे बहुत कुछ जानेंगे मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जाहिर सी बात है कि जब एक स्कूल कॉलेज हमें अच्छा मिल जाता है तो वाकई बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है कि वहां की फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ने पढ़ाने का माहौल अच्छा है, करिकुलम एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ हम यहाँ से सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। और फाइनली एक दिन आता है रुखसती का, विदा होने का। उसके बाद अपना सिलसिला शुरू होता है कि मुझे क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना। तो यही सारी बातें कर रहा हूं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एलुमनाई हैं शारदा विश्वविद्यालय की बीएससी नर्सिंग डिपार्टमेंट से शहजादी, जो कि बांग्लादेश से हैं। तो शहजादी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस रहा शारदा यूनिवर्सिटी का, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा?
1: मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इधर का शारदा का जो है बोलती है वॉलंटियर, मेरे को सच्ची में लगती है वॉलंटियर। क्योंकि इधर में अगर हम इतना दूर से आया है, इधर का जो फैकल्टी है बहुत लगता नहीं है फैकल्टी है, लगता है हमारा फैमिली का मेंबर है। तो उसके हमारे साथ जितना भी इंस्पायर किया, सब कुछ में हेल्प करती है बहुत ज्यादा अच्छी से। लेकिन मैं इतना दिन मैं बहुत अच्छी से रहा इधर में। और हम जब बाहर में रहती है, जब माई पेरेंट्स आर फ्रॉम यूके, सो उधर में हम लोग क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है।
0: इंडिया का सीरियल,
1: इंडिया का सीरियल, दिल्ली का क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है। तो वो लोगों ने बोला क्राइम इधर में जाओगी कैसे रहेगी, उसको इतना ट्रस्ट नहीं था, उसको कॉन्सेप्ट कुछ अलग था। कोई भी नहीं आना चाहती थी जे हाँ इधर नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं इधर में एडमिशन हुआ, मेरा पापा मम्मा ने देखा है, और इधर का जो सिक्योरिटी है, इतना भी क्राइम पेट्रोल हो जाए लेकिन शारदा का जो सिक्योरिटी है, जाकार्ता जो लोग है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो मेरा जो फैमिली का जो एक कंसेप्ट था, हाँ उधर में बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल होती है, लेकिन उसको चेंज हो गया, उसको अभी वो रिस्पेक्ट करती है। हाँ, बहुत अच्छा कंट्री है, अच्छा जगह है, और शारदा तो बेस्ट है।
0: वाओ, नाइस क्लैपिंग, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया कि इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। और जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, मुझे ये सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई, क्योंकि क्राइम पेट्रोल जब आप देखा करती थी तो लोगों के दिमाग में यही था, जो कि आपने बताया कि पेरेंट्स ऐसा सोचा करते थे, आपके जानने वाले सोचा करते थे कि अगर आप इंडिया जाएंगी तो वहां इस तरीके का क्राइम होता है, कहीं आपके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। लेकिन आपने कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये सुनकर शहजादी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके साथ जो बातों का सिलसिला है बहुत अच्छा होने वाला है। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा बहुत बड़ी ही खूबसूरत एलुमनाई है, और किस तरीके से खूबसूरती के साथ इन्होंने शारदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, ये उनके खुद के विचार हैं। और क्या है आगे जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरी यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़ी हुई है शहजादी मल्लिकाय फ्रॉम बांग्लादेश।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं शहजादी बांग्लादेश से और आप यहां की एलुमनाई हैं, बीएससी नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी हैं, 2020 की पास आउट हैं। तो शहजादी, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है।
1: ओके।
0: पढ़ने पढ़ाने की हमने बात की थी, अब हम बात करते हैं कि यहाँ की जो करिकुलम एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते थे, कैसा लगता था और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना प्लीज।
1: हाँ, जितना भी करिकुलम था वो तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैं इधर का जो फैकल्टी है या टीचर है हमारा, वो सब कुछ लगता है वो हमको बच्चे जैसा हर टाइम हमको पास रखती है, जो भी होती है डांटती है। तो उस टाइम मेरे को स्ट्रेस भी आया, ये लोग बहुत डांटती है, ये लोग बहुत ज्यादा काम कराती है। लेकिन फिर बाद में स्लोली स्लोली जब मेरे को अचीवमेंट होती है तब लगता है नहीं, ये तो मम्मी जैसा ही वो करती है। तो इससे मेरे को बहुत अच्छी लगा, ये लोग बहुत हमको प्यार करती है, हमको डांटती है तो हमके भलाई के लिए डांटती है। तो इसलिए मैं जितना भी पार्टिसिपेशन हुई है इधर में, उसने इनकरेज किया, हाँ तुम इसको करो ये करो, अगर फेल हो और विन हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अगर एक्सपीरियंस लोगी तो तुम्हारा लाइफ के लिए अच्छा होगी। तो इसने बहुत, इधर का जो भी फैकल्टी है, मेरा नर्सिंग का जो फैकल्टी में इसको हर टाइम मिस करती हूँ, इधर का बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारा दीन, हमारा माधुबी मैम, वो तो मैं जब उसको पहली बार देखा यूनिवर्सिटी में, उस टाइम मेरे को नहीं जानता क्योंकि मैं पहले एक महीने पहले आया इधर में, फिर मैं इंटरनेशनल डिविजन में काम किया कंप्यूटर का। तो उस टाइम एक महीने के बाद ही मेरा स्टडी शुरू हुआ है नर्सिंग का, तो उसको पहले मैं देखा है हॉस्टल में, तो इतना अच्छी था। वो नहीं जानती मैं उसका स्टूडेंट हूँ, मैं भी नहीं जानती हूँ मेरा टीचर है।
0: माय गॉड, बहुत खूबसूरत
1: इंसिडेंट हुआ। और उतने माधवी मैम बहुत अच्छी है, एक्चुअली के लगता है मेरा खुद का बहरा बहन है, मेरा कोई बड़ा बहन नहीं है, हम तीन ही बहन है, तो मेरे को लगता है वो मेरा बहन जैसे है, मैडम से ज्यादा बहन लगता है।
0: सो स्वीट शहजादी, बाकी आपके जो विचार है, आपके जो थॉट्स हैं, मैं जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत खूबसूरती के साथ अपने शब्दों को आप बयां कर रही हैं कि जो जो आपने फील किया, चाहे वो फैकल्टी के साथ आपके रिश्ते की बात हो, आपने जहां काम किया और आपको नहीं पता कि सामने वाला जो क्लाइंट है मेरे ही टीचर होने वाले हैं, उनके साथ जो संबंध रहे, रिलेशन आपके रहे, वो भी आप बयां कर रही हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, अपनी बातों को आप यहां रख रही हैं हमारे लिसनर्स के सामने। तो उसके बाद जो सिलसिला रहा, यहां से जो आपने सीखा समझा, दोस्तों के बारे में आप मुझे बताइए कि यहां के दोस्त आपके साथ जुड़े बने, यहां का कल्चर आपने क्या डिफरेंट पाया?
1: एक्चुअली क्या है, हमारा कंट्री और इंडिया में इतना फर्क नहीं है,
0: समान
1: है, एक ही था, क्योंकि एक ही था। अगर आप हमारा जो प्राउड है, हमारा जो 1971 में जो फाइटिंग हुआ है, उसमें अगर बहुत बड़ा
0: हेल्प
1: योगदान है तो वो हमारा इंडिया का है, क्योंकि उस टाइम जो इंदिरा गांधी मैम था उसके से हमने हेल्प करके हमारा देश को जीता है, तो इसका हमका बड़ा दान है इधर में। तो इंडिया का हमारा लगता नहीं है हमारा दूसरा कंट्री, लगता है हमारा घर ही है,
0: बहुत खूबसूरत।
1: और उधर का जो लोग होती है, हमारा इधर का जो लोग होते हैं, सब सेम होती है। इधर का जो भी हॉस्पिटलिटी है और जितना भी लोगों को खुद अपना समझती है, उधर में भी सेम है, कोई फर्क, इतना फर्क नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, हम सबको अपना समझती है, क्या बात है, ये जो एक्सेंट आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। इसके बारे में ऑफ एयर आपसे बात हुई थी कि ये जो एक्सेंट आ रहा है क्या बांग्लादेशियों का ऐसा है या आपका है तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में शहजादी से हम जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ी हुई है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी हैं, आप एलुमनाई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, प्रेसिडेंट फाउंडर भी हैं आप क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के, इसके बारे में भी जानेंगे जरूर, मगर छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शाता 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: आले मेरे को भूल गए तुम, अगर कोई अच्छे अच्छे स्टूडेंट आते हैं खुद ही बात करने लग जाते हो, मेरे को पीछे रख दिया तुमने। मेरे को ये क्या बोलते है?
0: दिल
1: हाँ दिल दुखा है मेरा, बहुत ज्यादा दिल दुखा है। मतलब इतनी प्यारी शहजादी स्टूडेंट आई है, तुम खुद ही बात करने लग गए।
0: नहीं मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें भी मैं इंट्रोड्यूस करा था।
1: नहीं मेरे को इंट्रोड्यूस कब कराओगे शहजादी बेबी? हाय हाउ आर यू?
2: आई एम फाइन, हाउ आर यू?
1: देखो गगन ना खुद ही बात कर रही थी, मेरे को नहीं लेकर आए थे, मेरा बहुत दिल दुखा है, मेरे से बात करो ना।
2: मैं गगन से सॉरी बोल रही हूँ आपके लिए।
0: देखा बहादुर, आपसे शहजादी बात कर रही है, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं पूछना चाहते हैं।
1: हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुमने एक्शन मार नहीं रहे थे, और जो तुम बोल रहे थे, क्या बांग्लादेश में ऐसे ही बोलते हैं या कहीं से बाहर से आपकी परवरिश हुई है? कौन सा देश है बताओ ना। हम
2: मैं क्या है, मैं बांग्लादेश से हूँ, लेकिन मैं जब छोटा था तब मेरा फादर की बिलिंग जी ने।
1: बेटे अभी भी तुम छोटे हो, कौन से बड़े हो गए?
2: आपसे तो छोटी ही हूँ।
1: आले मेरे को इतना बुजुर्ग ना बनाओ बेटा। हाँ तो अब मुद्दे की बात करो।
2: ठीक है, तो मेरा फादर ने इंजीनियर था, तो उसने सऊदी में गया था, तो उसके बाद हम लोग जो फुल फैमिली है वो उधर में शिफ्ट हो गया, तो उधर में मेरा स्कूलिंग हुआ है। उधर के बाद मेरा फैमिली लंदन में आ गया, तो उधर का मेरा फादर को गवर्नमेंट से सब कुछ मिल गया, तो उधर में चला आया, अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग उधर में रहा। फिर मैं इंडिया में रहा, मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है बैंगलोर में, उधर में स्टडी किया, तो उसके बाद मैं नर्सिंग में आया। तो इसलिए मेरा एक्सेंट सब फ्रेंड्स वगैरह सबको साथ एक साथ रहने के कुछ अलग हो गया।
1: अब मैं जा रहा हूँ गगन।
0: मतलब क्यों?
1: अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत भ्रमण किया इन्होंने, मैं इनके सामने बैठ ही नहीं पा रहा। मतलब यूके घूम कर आई है, लंदन घूम कर आई है, और मतलब सब जगह घूम लिया इन्होंने तो।
0: हाँ ये बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत पहुंची हुई है, मतलब हर जगह का इन्होंने पानी पिया है और बहुत समझदार है।
1: हाँ मैं अब तुम ही बात कर लू।
0: तो खैर बहादुर को मैंने एक तरफ रख दिया शहजादी। मुझे ये तो रही बात आपकी, अलग अलग देशों में आप गई हैं, बहुत कुछ आपने सीखा है समझा है, कब आपको लगा कि यार मुझे अपना कुछ करना है? जैसे आप खुद मुझे बता रही थी कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, तो उसके बारे में दिमाग में कब आइडिया आया?
2: इसमें उस टाइम में मेरे जब नर्सिंग का डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा करने के बाद मैं एक प्रोग्राम था, मेरे को सीखना है, मेरे को जानना है इस दुनिया में क्या हो रही है, तो मेरे को जो नर्सिंग में आया हो, तो मैं नर्सिंग में बहुत बड़ा होना चाहती थी। तो इसलिए क्या हुआ, मैं एक डॉक्टर को एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला मेरे को इधर में रेफरेंस रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसने मेरे को बोला तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती क्योंकि तुम नर्स हो, तुमको इधर में
0: का वाक्य है,
2: एक बांग्लादेश का था,
0: बांग्लादेश का,
2: हाँ तो बांग्लादेश का था, तो उसने बोला जो तुम नर्स हो तुमको इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारा जो भी स्टडी वगैरह जो भी है इधर में कोई काम नहीं है। तो मैंने बोला आप जो स्टडी करा रही हो वो एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी के लिए कर, तो वो बहुत अच्छा टॉपिक था, तो मेरे को वो सीखना था, तो उसने बोला नहीं ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, तो मैंने सोचा अगर कोई बांग्लादेश में, मैंने सोचा अगर उसका कॉन्फ्रेंस हो सकती है डॉक्टर का, अगर सोसाइटी है बांग्लादेश में तो नर्स का क्यों नहीं होगी। तो इसने मैंने सोचा ठीक है मैं नर्सिंग सोसाइटी बनाऊंगी। तो मैंने मेरा जो मेरे चार फ्रेंड को बोला, उसने बोला ठीक है चलो।
0: फ्रेंड्स के नाम भी बताइए।
2: हाँ मेरा फ्रेंड का नाम है नाहिदा, दूसरा फ्रेंड का नाम है सलीम, और तीसरा फ्रेंड का नाम है आयशा। तो मैंने इन तीनों को बताया, उसको बोला चाहे हम लोग ये करना चाहते, उसने बोला
0: दोस्तों ने मिलकर ही कंपनी,
2: हाँ उसको उसने बोला तुमको पागल हो गया, तुम ऐसे के ऐसे करोगे, बहुत बड़ा फाउंडेशन है ये नहीं कर सकती। तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं कर लूंगी, तुम साथ मेरे साथ रहना। तो उसने मेरे को हेल्प किया, हाँ सपोर्ट किया है, तो उसको सपोर्ट से मैं बनाया, मैं हर जगह में हर नर्स को पास गया, कोई नर्स मेरे को उस टाइम उतना प्लेस नहीं दिया, उसने बोला ये क्या है तुम क्या करोगी, हमको नहीं करनी है, ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसे बोलती थी। तो मैंने उस टाइम सैलरी मेरे को मिलता था 20,000 रुपीज, तो उसने मैंने क्या किया, मेरा जो 5% मीन 55,000 आई कीपिंग फॉर माई गोइंग एंड कमिंग, एंड 15,000 मैंने इसमें खर्च किया। तो इसमें खर्च करके इसको थोड़ा सा बनाया, फिर मैंने हमारा कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको शब्द मिला, उसको से हमारा जो सोसाइटी है उसको इनोग्रेट किया, तो बांग्लादेश का हेल्थ मिनिस्टर से हमको रजिस्ट्रेशन लिया। और ये जो क्रिटिकल केयर सोसाइटी है ये बांग्लादेश में एक ही सोसाइटी है जिसको रजिस्ट्रेशन मिला।
0: क्या बात, क्लैपिंग बनती है, बहुत खूबसूरत शहजादी, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है। हाँ। बहुत अच्छा एक स्ट्रगल
2: सिर्फ ऐसे ही नहीं किया, उसको करने के बाद मेरे को सोचा ठीक है बांग्लादेश में कर लिया, अभी मेरे को इंटरनेशनल भी उसको दिखानी है।
0: तो
2: इसको दिखानी है तो बांग्लादेश में जितना भी हमने ऑलरेडी 500 स्टूडेंट को मैंने वर्कशॉप किया, उसको सिखाया फ्री में। हमारे जो सोसाइटी है उसमें हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, सिर्फ दुआई लेते हैं।
0: बहुत खूबसूरत।
2: और क्या होती है, हम जितना भी हॉस्पिटल में जाती हूँ उसको हम फ्री में सबको सिखाती है, सब कुछ करते, सिर्फ उसमें उसको टाइम देती है हमको, तो उस टाइम में हम सिखा देते हैं। तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट 85 यूनिवर्सिटी स्कूल हॉस्पिटल में कर लिया है से काम। अभी 5000 नर्स है जिसको क्रिटिकल केयर के बारे में सब कुछ आती है। तो उस टाइम मैंने एक बार मैं अमीरात से नेपाल में गया, नेपाल में जाने के बाद उसको इंटरनेशनली मेरा जो लोगो है ना उसको बारे में बताऊं। जब मैं फाउंडेशन किया तब मैं गया वेबसाइट खोलने के लिए लोगो बनाने के लिए, तो उसने बोला लोगो बनाऊंगी तो 32,000 रुपी लगेगी। मैंने बोला मैं तो कमाती हूँ 20,000, तो 30,000 कैसे करेंगे। तो मैंने बोला अगर इस लोगो को बनाना सीखने में कितना लगती है, तो उसने बोला 1,000 लगती है। तो मैंने बोला ठीक है मैं सीख लूंगी 2 महीने में। तो मैंने ग्राफिक डिजाइन और इंटीरियर जो भी है उसको सीखा, उसे सीखने के बाद फिर मेरा खुद का लोगो मैंने खुद बनाया है।
0: क्या बात है, ग्रेट ग्रेट शहजादी, रियली नाइस टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई।
2: तो उसको बनाया, उसको बनाने के बाद फिर मैं इंटरनेशनल नेपाल में गया, उधर में हमारा लोगो उधर उसको जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें डाला। फिर उसके बाद मैंने एमिरेट्स में गया, एमिरेट्स प्राइम मिनिस्टर के हमको अवार्ड रिवॉर्ड दिया उधर से, तो उधर के भी लेकर गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में लेकर गया, फिर श्रीलंका में लेकर गया। हमारा सोसाइटी को होल अभी सब जानती है, एक अच्छा सोसाइटी है।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुभकामनाएं शहजादी आपकी सोसाइटी के लिए, आपके लिए, आपका भविष्य उज्जवल रहे, आपकी जो मुरादें हैं नेक मुरादें, इंशाल्लाह ठाकुर जी भगवान आपकी मुरादें पूरी करें। आपसे बात करके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं आशा करता हूं कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे होंगे कि जब आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, एक रणनीति के तहत अगर इंसान आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आफ्टर सम टाइम वो अपनी मंजिल को पा ही लेगा।
1: हाँ देखो बेटा, मैं इसीलिए बात नहीं कर रहा था, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ये, बहुत दूर दूर तक घूमे, लेकिन गगन एक बात कहना चाहता हूँ।
0: हाँ?
1: कान लाओ, ये मैडम कह रही है कि हम दुआएं लेते हैं, पैसा
0: मतलब
1: पैसा मुझे दिलवा दो ना।
0: बादो तुम हमेशा ऐसी नोटी वाली बातें करते रहते हो। खैर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं हैं शहजादी, कुछ और बातें जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़ी हुई है बहुत ही टैलेंटेड खूबसूरत शहजादी जो कि यहाँ की पास आउट है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि उनके दिल के विचार बहुत ही खूबसूरत हैं, खूबसूरत इसलिए कि लोगों की दुआएं लेती हैं, पैसे नहीं लेती हैं, खूबसूरत इसलिए कि बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत कुछ सीखना समझना चाहती हैं। तो शहजादी हैं मेरे साथ, जानेंगे जरूर और आगे की बातें, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: अल्लामा इकबाल साहब का बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM में, यानी गगन के साथ। और इस वक्त शहजादी बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और यहां की आप एलुमनाई रही हैं। आपने BSc नर्सिंग का कोर्स किया 2018 से 2020, ये एक समय था। और इसके बाद इन्होंने खुद का अपना एक, आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, ये इनकी सोसाइटी है। और बहुत कुछ इनकी जर्नी के बारे में हमने जाना है, स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। अब हम आते हैं एक ऐसी खास बात के बारे में, जिक्र करना चाहते हैं। कोरोना का समय ऐसा समय रहा कि जिसकी वजह से सब लोग परेशान रहे, लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ईश्वर खुदा कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहा होता है। तो ऐसे ही कुछ शहजादी ने सोचा और लोगों के बीच में गई। क्या रहा वो कोविड का समय, किस तरीके से इन्होंने लोगों की मदद की, किस तरीके से इनका वर्क एक्सपीरियंस रहा, शहजादी अब आप प्लीज मुझे इसके बारे में बताइए।
1: कोविड का जो टाइम आया था वो हमारे इस वर्ल्ड के लिए बहुत खतरनाक का था, टाइम था। सबने डरती थी, सबने घर से बाहर नहीं आया। अगर उस टाइम में मैंने जब स्टडी मेरा पास आउट हो गया तो मैंने बांग्लादेश चला गई। जाने के बाद मैं कोविड में स्टार्टिंग किया, काम किया। कोविड का जो फुल ICU है, 50 ICU है, उसमें मैंने इंचार्ज था, उसका इंचार्ज था, उससे काम किया। मैंने खुद भी 4 बार कोविड से आक्रमण हुआ है।
0: Oh my God.
1: तो पहले बार जब हुआ था तब तो कोविड का काम करते करते, क्योंकि हमारा उधर का हार्ट का पेशेंट आती है, कोविड भी है, उसका हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है और दूसरा रेस्पिरेटरी। तो उस जो टाइम था, उस टाइम मेरे को एक ही सोचना था कि मेरे को इसको बचानी है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं कोविड का ओपन ड्रेस जो था उसको ओपन करके मैं खा रही थी, तो उस टाइम एक बच्चा ने मेरे सामने आकर बोले, मेरा पापा अभी अंदर गया है, वो क्या बचेगी मेरा पापा, क्योंकि मैं खो दूंगी। तो वो मेरा दिल में चला गया। तो मैंने सोचा, उसका हार्ट अटैक आया था, उसको कोविड पर था, हार्ट अटैक था। तो उस टाइम मैंने खाना सिर्फ लेंगे, तो मैंने उसको उधर के छोड़ के मेरा कोविड का ड्रेस भी नहीं पड़ा। मैंने बोला कोविड का ड्रेस पड़ने में 10-5 मिनट लगेगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर उसको सेव नहीं करूंगी तो ये बच्चे को, इसको पापा चला जाएगी। तो हमने गया उधर को, उसको CPR दिया। CPR देने के बाद, कोविड का पेशेंट को CPR देना मना है, क्योंकि CPR देंगे तो स्प्रेस होगी उसमें, इसलिए जो वायरस फैलेगी, क्योंकि उसको कवर करके सेफ करनी है। तो मैंने बोला वो सब, तो डॉक्टर जो था उसने बोला हम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कर लेंगे, मेरे को बचाना है इसको। तो उसको ना 25 मिनट कंटिन्यू किया, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो मैंने, मेरा हौसला नहीं छोड़ा, मैंने बोला फिर 10 मिनट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होती है, क्योंकि उसको बच्चा जो रोते है ना, वो मेरा दिमाग में खेल रही थी। तो मैंने फिर 10 मिनट किया, फिर एट द लास्ट 7 मिनट ही कम बैक।
0: आए हाय माशाल्लाह।
1: तो
0: उसने, तुम्हारे चरण कहाँ है शहजादी, तुम्हारे चरण कहाँ है, तुम जीत गए, तुमने हमारा दिल ले लिया। मतलब कितना अच्छा काम कर रही है, देखो किसी की जिंदगी लाना बहुत बड़ी बात है, तुम्हें पता नहीं गगन। हाँ वाकई ये नेक काम किया, मेरी आंखें भी नम हो गई शहजादी, जिस तरीके से बहादुर अपनी बात रख रहे हैं कि आपने दिल जीत लिया, कसम से हमारे बहादुर का, हमारे श्रोताओं का, कि किसी की जिंदगी देना बहुत बड़ी बात है। और आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि हौसला अगर आपका बुलंद है तो निश्चित तौर पर वो काम हो ही जाता है। आपने 25 मिनट तक CPR दिया, उसके बाद 10 मिनट तक फिर आपने दिया, आप थकी भी होंगी, तो कैसा रहा वो पीरियड?
1: वो जो पीरियड था उसमें ना मेरे को इतना थकन नहीं लगा, उसने मेरे को एक ही चीज था, जे वो जो आदमी था वो 35 का था और उसका बच्चा 5 का था, बहुत क्यूट था।
0: Oh my God.
1: तो और उसको बीबी भी 17 का है, हमारा कंट्री में मुसलमान जल्दी शादी कर लेते हैं। तो एक बच्चा, एक 17 ईयर्स का लड़की, उसको आहार देख रही है और उसको बचाएंगे तो मैं नर्सिंग में क्यों आई? तो यही मेरा था। तो मेरे को था, मेरे को जो, हाँ मेरे को अगर CPR 5 मिनट देती है तो उसको हैरान हो जाती, वो नहीं दे सकती। लेकिन मैंने बोला मेरे को नहीं, ठीक है। मेरे साथ और भी एक ब्रदर था, उसका नाम है रकीब, तो उसने भी किया, उसने बोला आप इतना मत करो, मैं कर रही हूँ। तो उसने कर रही है, मैंने बोला मेरे सेटिस्फाई नहीं रही हूँ। मैंने बोला मैं CPR का आहार से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं उधर से एक्रीडेशन उसी उधर में पास किया है। तो मैंने बोला मैं CPR का रजिस्टर नर्स हूँ फ्रॉम आहार से, तो मेरे को करना है, मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कोई हाल में इसको बचानी है। और उस टाइम मैं उसको कर रही थी और मेरा को मुसलमान का जो धर्म का जो प्रेयर होती है वो भी पढ़ रही थी उसके लिए। तो उसको दोनों करके फिर जब वो आया, जब उसको उसको बीट हुआ, तब मेरे को एहसान आया, अभी मैं खुश हो गया। लाइफ में कुछ करती है तो उसमें अगर सुकून मिलता है, और लोगों को जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में देखती हो, कोई दिक्कत में देखती हो, अगर उसको कुछ कर सकती हो, उसको हंसी दे सकती हो, तो मेरा लगता है ये मेरा बहुत
0: बहुत खूबसूरत शहजादी। रियली रियली मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से दिल से दुआएं हैं आपके लिए, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने अगर आपको जमीन पर इस काम के लिए भेजा है, आप बेझिझक लोगों की मदद करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास सिर्फ दुआएं ही होती हैं, रुपया पैसा नहीं होता। आप इस काम को करते वक्त कभी ये मत देखिएगा कि ये अमीर है गरीब है, इस काम को निस्वार्थ तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा आपके लिए, सोसाइटी के लिए। रियली रियली रियली रियली नाइस टॉक टू यू शहजादी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर कर, और आपकी मुरादें पूरी होती जाएं, आप अच्छा करें, बेहतर करें, और बस दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ और कहना चाहती हूँ तो आप कह सकते हैं।
1: हाँ, मैं कहने चाहती हूँ कि हमारा कंट्री में बहुत ये बच्चा जन्म लेती है, इंडिया में भी लेती है, किसी हार्ट का प्रॉब्लम होती है, जब जन्म के बाद ही उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करने में 2-3 लाख लग जाती है, इंडिया में भी लगती है, बांग्लादेश में भी लगती है, तो उस तरह बच्चे को पास इतना पैसा नहीं होते जितना उसको लगेगी, कोई की है गरीब है, बहुत गरीब है, उसको नहीं लगती है। तो एक तुर्की का एक कंपनी है और सऊदी अरब का एक कंपनी है, जो उसको ये एनजीओ है उसमें हेल्प लेकर, हमारे बांग्लादेश में एक डॉक्टर और मैं भी उसके साथ शामिल हूँ, तो उसमें मैं नर्सिंग का फ्री जो उसका जो 10 दिन का केयर होती है वो मैं फ्री में देती हूँ, उसको सब कुछ मैं करती हूँ, और जो डॉक्टर का ऑपरेशन वो करती है। तो उस तरफ का हम लोग जितना भी बच्चा है जिसको भी हार्ट प्रॉब्लम है उसको फ्री में कराती हूँ। अब 400 बच्चे को ऐसे कर लिया
0: अपनी सिटी में करा, अपने देश
1: हमारे
0: में करा।
1: देश में किया, आपका इंडिया में भी करा, आपका इंडिया में जो छत्तीसगढ़ है उधर में एक हार्ट इंस्टीट्यूट है, तो उधर में भी हमारा डॉक्टर है, हमारा जो उधर का जो टीम है उसको साथ हमको एक साथ काम करती है। अगर इंडिया में भी ऐसे बच्चे होते हैं जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है लेकिन उसको पैसा नहीं है, तो वो छत्तीसगढ़ जो हॉस्पिटल है हार्ट का, तो उधर में जा सकती है।
0: अच्छा, ग्रेट। शहजादी मुझे एक चीज बताइए, कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे, शहजादी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो शहजादी का सोशल मीडिया एक जरिया हो सकता है या कुछ और दूसरा जरिया हो सकता है, अगर आप कुछ बताना चाहें तो किस तरह से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं?
1: हाँ, मेरे साथ मेरे फेसबुक का जो मेरा पेज है उसमें भी बात कर सकती है, मेरे इंस्टाग्राम है तो उसमें भी बात कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई की किसी को मदद लगेगी और कुछ कोई भी हेल्प, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं किसी का मदद करेंगी तो दूसरा बार अल्लाह ने मेरे को लिए कुछ भेजेगी मदद करने के लिए। एक्चुअली आई डोंट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी डाई, that when I die people should have a smile on their face, that this is Shahzadi.
2: अरे बेटे, तुम मरने की बात क्यों कर रहे हो, तुम्हारे तो दिन अभी शुरू हुए, और तुम देखो जाना बेटा एक दिन सबको है, लेकिन तुम हमेशा जिंदा रहोगे, हमारे दिलों में रहोगे, शाबाश शाबाश मेरे लाल लगे रहो।
0: देखो शहजादी है तुम ऐसे,
2: अरे नहीं शहजादी जो बहुत अच्छा काम कर रही है, आई लव यू शहजादी।
0: ये बहादुर है, ये ऐसी सी बातें करते हैं।
2: अरे प्यार करना कोई गलत बात है शहजादी, तुम बताओ?
1: नहीं, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, प्यार तो दिल से करना चाहिए।
2: हाँ देखा,
1: तुम प्यार किया तो डरना क्या,
0: क्या बात है। शहजादी मेरी तरफ से रियली रियली रियली बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप नेक काम कर रही हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, और बस यही प्रार्थना है परवरदिगार से कि आपका ये काम अच्छा चलता
1: है। एक मैं बात बताऊं, जब मैं कोविड में काम करने थे तब मेरे को जो नेदरलैंड है, नेदरलैंड ही हॉस्पिटल है, तो उसका जो हॉस्पिटल से मेरे को जॉब ऑफर आया था, उसका 4 लाख सैलरी था, और दूसरा आया था कनाडा से, तो उसमें भी मेरा हाई सैलरी था। तो मैंने सोचा अगर मैं इस टाइम में कोविड में अगर अच्छा सैलरी मिला, इस कोविड में सब मौका ढूंढती है तो इस मौका में चला जाएंगे तो मैं खुद को गिल्ट फील करेंगे, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया उस टाइम में, क्योंकि मेरे को उस टाइम कहाँ पे भी नहीं जाना था, मेरे को मेरा खुद का कंट्री का लोगों का हेल्प
0: करूंगा, क्योंकि मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि जॉब में शायद बंद कर रह जाएंगे।
1: हाँ।
0: ये काम अगर आज आप शुरू करेंगे तो बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कनेक्ट होना चाहेंगे, और आपके जरिए लोगों को मदद भी मिलेगी। तो मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है कि जो आप काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, आप यूं ही करते रहें।
2: मुझसे दोस्ती करोगे शहजादी?
1: हाँ जरूर, क्यों नहीं।
2: मैं नंबर लेने वाला हूँ, तुम देखते रह रही हो।
1: ठीक है,
0: बहादुर नंबर आपसे जरूर एक्सचेंज करेंगे। तो शहजादी मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आपको कैसा लगा?
1: हाँ, मेरे को आपके साथ बात करके बहुत अच्छी लगा, आपका बहादुर जो है उसको भी बहुत अच्छी लगी।
2: देखा मेरी जो निकल पड़ी, मजा आ गया, मैं फेमस हो गया। देखो गगन, बांग्लादेश जाऊंगा मैं, नीदरलैंड जाऊंगा मैं, जब जहाँ जहाँ जाएंगी मेरे बारे में बताएंगी कि वहाँ एक बहादुर है, मेरे को आई लव यू बोला था उसने।
0: चलिए जनाब, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहादुर को इन्होंने बहुत पसंद किया, आपके काम को हम सबने पसंद किया। दिल से एक बार फिर शहजादे आपके लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, शुभकामनाएं। माधवी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? माधवी की वजह से हम लोग यहाँ हैं, हम लोग बात कर पा रहे हैं।
1: हाँ, ये तो मैं पहले ही बोला, जब मैं उसको देखा था और तब मेरे को पता नहीं था वो मेरा टीचर था, तो वो बहुत इंस्पायर करती है मेरे को, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग है जिसमें हमारे कंट्री में, इंडिया में, तो आर्ट ऑफ लिविंग एक अच्छा चीज है जिसमें लोग जाएगी तो उसमें बहुत कुछ सीखेगी। तो उसको भी मैंने उसको से सीखा है, उसको वो मेडिटेशन जानती है तो उसे से मेडिटेशन सीखा है। लेकिन जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत हुई, तो मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया है लाइक व्हेनेवर आई फॉल, लाइक यू नो दैट आई फॉल समवेयर, लाइक आई एम ब्रेकिंग डाउन टू मच, आई हैव अ डिप्रेशन, एंड दैट टाइम शी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी एज लाइक अ लायन, आई फील लाइक देयर वॉज अ लायन टू कम एंड सेव मी। So this is the, she is like that, they always helping me as a lion. So I really appreciate her, whatever she's doing for me, this is really thankful.
0: थैंक यू सो मच शहजादी, और शुक्रिया आपके लिए माधवी। बहुत अच्छी बात आपके फेवर में सुनने को, समझने को मिल रही है। बाकी आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ऐसे टैलेंट को अगर आप ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं जो अपने लिए, अपने देश के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कि यहाँ के शारदा के एलुमनाई हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कुछ और कहना चाहती हैं माधवी आप?
3: सर, हाँ, और जैसे आपने बताया कि एलुमनाई का है, तो एलुमनाई में हमारी जो मेन, जो एक यूनिवर्सिटी लेवल पर जो सेल वर्क करता है, जो मेन इसकी लाइक की करता धरता मैम है, मोनिका मैम, गंगा सर है जो एलुमनाई सेल को देख रहे हैं, और बोर्ड ऑफ मेंबर जो काफी, मतलब जब हमारी शारदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है उस टाइम से अजीत सर, हरी सर, मोनिका मैम, दिस All are working as a team. तो और इनके अलावा जो स्टूडेंट मेंबर हैं, जो मेन एलुमनाई सेल के चैप्टर को इनॉग्रेट कर रहे हैं एवरी कंट्री में, अनुराग एंड उनकी टीम, सो आई विद देयर कोलैबोरेशन जो आज हमारे एलुमनाई है वो हर कंट्री में जा रहे हैं, एंड नॉट ओनली लाइक शहजादी, दे आर सो मेनी लाइक एलुमनाई, दे आर डूइंग, आई जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कोविड टाइम जब हमारी इंडिया की एम्बेसी ने सभी स्टूडेंट्स को वापस ला रही थी, तब हमारे शारदा के कुछ स्टूडेंट दे आर वर्किंग इन कंट्री लाइक कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, वो नर्सिंग सर्विसेज दे रहे थे, दैट टाइम दे डिनाइल कि नहीं वी वॉन्ट टू सर्व दिस कंट्री, बिकॉज दैट टाइम जब हमें चाहिए था तो हम यहाँ पर थे, और अब इस कंट्री को जरूरत है, वहां के इवन की वहां के खुद के स्टाफ ने वहां पर लोगों ने छोड़ दिया था, पर इंडियन नर्सिंग्स जो थे वो स्टिल दे आर वर्किंग एंड उन्हें अप्रिशिएट किया गया है।
0: क्या बात है माधवी, वाकई अगर मैं आपको मौका ना देता और अगर आप खुद ये मौका ना लेती तो ये अच्छी बात हम नहीं कह पाते। सो रियली मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से कि आपने बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, बहुत अच्छा आप लोगों ने हमें समय दिया, और बस शुभकामनाओं के अलावा मुझे लगता है कुछ और बातें होती ही नहीं है। शुभकामनाएं अपने आप में बहुत बड़ी चीजें, अच्छी चीजें, कि दुआएं हर किसी को चाहिए, और दुआएं तभी मिलती हैं जब हम कोई नेक काम कर रहे होते हैं। किसी का दिल जीतना आसान है, बस आप उसके बारे में अच्छा कहिए, अच्छा सोचिए, और अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई।
3: सर हमें बहुत धन्यवाद।
1: We also become happy to talk to you.
0: Thank you, Shahzadi. So, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बाकी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।

0: सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन मां के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। मां कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: You know she liked the drama. Yes, she is sexy.
6: Ram Ram Dost Ram, Sat Sri Akal Adab. मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वॉइस वन एंड ओनली सुरु शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:05 हो चुके हैं, 14 तारीख है। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। Someone is waiting for you. Drama Queen के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। So don't go anywhere. Stay tuned. All your सुरु शारदा 90.8 FM with me, मेरे यानी गगन के साथ। क्या बात है, I love the track.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: द वर्ल्ड इज हियर।
2: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 14th अक्टूबर 2026 यानी कि 14th अक्टूबर बोले तो बुधवार का दिन, वेडनेसडे का दिन। और माँ कुष्मांडा से यही दुआ, यही प्रार्थना है कि हम सब का दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे। और एक बार पुनः नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और कुष्मांडा देवी की आज पूजा की जाती है। विधि विधान से सब लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। तन मन धन बुद्धि शुद्धि का ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। और मेरा मानना यह है कि सिर्फ व्रत के दौरान ही क्यों, हमेशा हमें सिखाया जाता है कि अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, ऐसा बोलिए कि किसी को नुकसान ना हो, किसी को बुरा ना लगे। और यही हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी कोई अच्छा बोले, है ना। हम नहीं चाहते कि हमारे लिए कोई कटु वचन बोले। तो चलिए हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए और सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा, यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करेगा। नोएडा की तरफ आप आ रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा से जब आप आ रहे हैं तो लगभग 100, मैं समझता हूँ 1 से 1.5 किलोमीटर पहले परी चौक से, और नोएडा से जब आप ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आप आ रहे हैं तो वहाँ पर एक गाड़ी ख़राब है जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा स्लो है। तो ऐसे समय में अनावश्यक हॉर्न ना बजाएगा, सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी बड़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहा है। और जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेगा, पुलिस को देखकर सीट बेल्ट या हेलमेट ना लगाएगा, ये आपकी सुरक्षा की बात है। और सुरक्षा हटी, कहते ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सैया दिल में आना रही, ब्यूटीफुल ट्रैक, श्रुति रानी की आवाज, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। गुड मॉर्निंग।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
1: 90.8 एफएम। अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अब ही चल।
1: तो अब ही चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सुरु शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सामुदायिक रेडियो स्टेशन है आपका रेडियो स्टेशन। तो इसी वजह से ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। जब मैंने पढ़ने पढ़ाने का जिक्र किया तो इसीलिए कहना चाहता हूं कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी, है ना। एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज आपको जानने को, सीखने को, समझने को मिलेंगे। कल्चरल एक्टिविटी भी लगातार होती रहती है। स्पोर्ट्स के बाद तो आप करिए ही मत, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए जब एक बार यहाँ आप विजिट करते हैं तो सवालों के साथ जरूर आइए, और सवालों के जवाब जब आप मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स यही होते हैं। जब मैं स्कूल कॉलेज का जिक्र कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि प्रकृति का नियम परिवर्तन है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में हमने देखा है कि स्मार्ट बोर्ड है, लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं। इस तरीके से AI के युग में ये पढ़ाई का जो एक सिलसिला है लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब एक खबर को मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसके बारे में तो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि वक्त बदल रहा है। AI युग में आप हैं, हम हैं। तो एक विदेश में स्कूल ने डिजिटल स्क्रीन वहां से हटाने का काम किया है, और ये अगर वो हटा रहे हैं तो सोचिए कि क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। और द टेलीग्राफ UK में एक खबर छपी है कि ब्रिटेन के सबसे हाई प्रोफाइल और महंगा वहां का बोर्डिंग स्कूल है, उसने ये काम किया है। और वहीं बच्चों के साथ वो अब कागज पेन पर आ चुके हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को वो बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जब वो काम करते थे उस दौरान उनका ध्यान डाइवर्ट होता था, डिस्ट्रैक्शन होता था। तो इस तरीके से ध्यान भटके ना, वो ध्यान लगा पाएं और कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जा पाएं। स्क्रीन हटाओ, हॉकी फुटबॉल वापस लाओ, कुछ इस तरीके से थीम के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं बच्चा पार्टी के साथ, और हम यही कहेंगे पेरेंट्स को कि बच्चा जब अक्सर खाना खाने जा रहा है तो भी उसके साथ मोबाइल है, या कुछ वो अगर खाली बैठा है तो भी हाथ में उसके मोबाइल है, या अगर हम चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा मुझे डिस्टर्ब ना करे तो भी उस वक्त हम उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। सो प्लीज बच्चे के भविष्य को और अपने भविष्य को सिक्योर करिए। अजय वाह क्या कह दिया जी, मेरे लाल गुड जॉब। 90.8 FM

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हम यहां से ऑन एयर होते हैं और आज नवरात्रि का चौथा दिन है, चतुर्थ दिन है, तो इस दिन की, इस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ कुष्मांडा देवी की आप सब पर कृपा बनी रहे और माता रानी ये भी कहती हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप व्रत न रखें। व्रत अगर आप रख रहे हैं तो ये समझिए कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है। माता रानी ये नहीं कहती कि आप पूरे दिन भूखे रहें, अपनी तबीयत का ख्याल ना रखें। तो जो हमने सुना है, समझा है, जाना है, तो बड़े लोग, विशेषज्ञ यही कहते हैं कि सबसे पहले आपकी काया निरोगी काया होनी चाहिए और अगर आप सामर्थ्य हैं यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप उस व्रत, उपवास या रोजे को रख सकते हैं। अदरवाइज दिक्कतें, परेशानियां मरीजों के साथ बहुत ज्यादा हो जाती है, है ना। तो कुल मिलाकर अपनी सेहत का ख्याल रखेगा। एक तरफ जब मौसम बदल रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि बदलते मौसम में किस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखें, इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। खाने पीने की चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि डाइट और इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी आप उसमें ले सकते हैं। डाइट में आंवला है, नींबू है। बाहर के खाने से आप अपने आप को बचा कर रखिए, बाहर का खाने को आप अवॉइड करिएगा। हल्दी अदरक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में आप हल्दी ले सकते हैं और चाय में अदरक ले सकते हैं और सही लिक्विड डाइट जरूर लें, यानी कि हाइड्रेट रखें अपने आप को। पानी भरपूर पीजिएगा, गुनगुना पानी पी सकते हैं जब आपको खराश की शिकायत है। पहनावे का भी ख्याल रखिएगा, यानी कि बदलते मौसम में हाफ बाजू के जो शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, वो आप रख दीजिएगा। कुल मिलाकर शारीरिक रूप से एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हाथ धोते रहिए, मास्क का प्रयोग करिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। कयामत फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक, वो लड़की बहुत याद आती है। फिलहाल अजय देवगन साहब छाए हुए दृश्यम 3 से और बहुत अच्छी फिल्म, मुझे लगता है कि ये आप सबको देखनी चाहिए अगर आपने पहला और सेकंड पार्ट देख रखा है। हाँ, हम लेट हो गए, हम जाएंगे इस बार। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अगर आपके साथ, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: क्या बात है, कार लेके घुमाएंगे। अच्छी बात है कार लेके घूमते रहो, लेकिन स्टंट बाजी करना गलत बात है, एक्सीडेंट हो सकता है, कभी कभी तो लोग निकल जाते। कवि का आशय ये कि मृत्यु तक हो जाती है। ये कवि कौन है? नहीं नहीं, हम आपको संबोधित करें क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्टंट बाजी मत करेगा, वरना दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। दिन की कमाई इतनी होती नहीं जितनी आपकी, कहते ना कि जेब ढीली हो जाती, चालान कट जाता है। 9:50 हो चुके, 14 तारीख है यानी कि 14th October, और आज है वेडनेसडे, बुधवार का दिन। शारदा अस्पताल के सामने जब जाम लगता है तो निश्चित तौर पर दिक्कतें परेशानियां सभी को होती हैं। मुझे लगता है कि हम सबको समझदारी दिखानी चाहिए कि यानी कि एक लेन को फॉलो करें, अनावश्यक तौर पर आप ओवरटेक न करें। और शारदा अस्पताल है तो जाहिर सी बात है कि एम्बुलेंस का आना जाना लगा रहता है, तो सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता दीजिएगा। रास्ता चाहे तो इंसान अपना बना ही सकता है, हिम्मत है मरता तो मदद है खुदा। ये बात दरअसल मैं क्यों कर रहा हूं, अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्या खास है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है और जो 14th मुकाबला है वो आज होगा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार शाम के 7 बजे ये मैच शुरू होगा। और जो लाइव स्ट्रीमिंग है अपने जो टीवी चैनल्स हैं उस पर आप देख सकते हैं, और जो अगर आपके पास ऐप है मोबाइल के जरिए भी आप देख सकते हैं। और भारतीय टीम इस वक्त 2-1 से आगे चल रही है, लेकिन वेस्ट इंडीज चाहेगी कि इसको बराबरी पर मुकाबला लेकर आया जाए। सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: इक्का रिक्रिएटेड तनिष्क बागची, लिरिक्स शब्बीर अहमद, ओनली ऑन टिप्स ऑफिशियल। सो लेट्स एंजॉय इट, ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जिंदगी म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय रुहान मलिक, लिरिक्स बाय साकिब नबी, ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM। जिंदगी।

सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। कूष्मांडा देवी का आज पर्व है, चतुर्थ दिन है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। बस यही कहना चाहूंगा कि जो रास्ते हैं, जो रास्ते हमें बताए गए, उन रास्तों पर अगर हम चलते हैं जहाँ सुकून है, प्यार है, मोहब्बत है, जियो जियो और जीने देने की जो भावना है, मतलब कुल मिलाकर किसी का दिल ना दुखाएं, अच्छा करें, भला करें, भला होगा, तो जिस तरीके से हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी मंजिल आपके बेहद करीब होती हुई नजर आएगी। सोचिए, कल्पना करिए कि अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं, उसकी टांग खींच रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम पूजा इबादत या कुछ भी करें तो मुझे लगता है कि वो सफल नहीं होगी, है ना। छोटी बात, सीधी बात, सच्ची बात। चलिए, आज का दिन आप सबका शुभमय मंगलमय गुजरे। और आज के दिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी कि विश्व मानक दिवस मनाया जा रहा है और ये उपभोक्ताओं, उद्योगों और नियामकों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और ई कचरा दिवस यानी कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे आज सेलिब्रेट, यानी कि सेलिब्रेशन का मतलब यह है कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से सही निपटान किया जाए और कचरा आप ना ही फैलाए तो अच्छी बात है, क्योंकि स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। और क्या अपडेट है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौतम गंभीर साहब का नाम आ रहा है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ओपनर, बल्लेबाज और वर्तमान मुख्य कोच गौतम गंभीर साहब का जन्म 14 अक्टूबर 1981 को हुआ था। तो आज इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनको लख लख बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो देखते हैं कि आज ही के दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाया था। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11, फिर हो गया आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू शारदा 90.8 एफएम, 120-40-60-205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। एक बार फिर से 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया पेज को भी फॉलो कर सकते हैं सुनो शारदा के माध्यम से, और सुनो शारदा इंस्टा पर, फेसबुक पर। फिर हो गया आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। ब्यूटीफुल आपके लिए, क्या बात है, आए है।

सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।

Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।

और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: फाइलेरिया के बारे में मैंने सुना तो था। हमारे गांव में एक दो फाइलेरिया के मरीज भी थे, पर हमने ज्यादा सोचा नहीं और घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। कभी नहीं लगा कि ये हमको भी हो सकता है। बड़ी गलती कर दी। अब ठीक तो नहीं हो सकता, सिर्फ रोकथाम की जा सकती है।
1: हाथी पांव यानी फाइलेरिया, इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है और एक बार हो गई तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और आपको तो पता ही है कि कैसे सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं, इस बीमारी का असर रोजी रोटी और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि फाइलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ये किसी को भी हो सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों के लिए इस बीमारी का कारण बन सकता है। फाइलेरिया का संक्रमण आपके शरीर में किसी भी उम्र में हो सकता है। इसे बीमारी में बदलने में लंबा समय लगता है, पर यह एक बार हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है।
2: सिर्फ हाथी पांव एवं हाइड्रोसिल ही नहीं, फाइलेरिया के कारण स्तन में सूजन एवं धात रोग भी हो सकता है। भारत के कई क्षेत्रों में अभी भी बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में। वैसे फाइलेरिया से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर साल सरकार MDA अभियान के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में फाइलेरिया से बचाव की दवा निशुल्क खिलाती है। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी दवा लेकर आपके घर आएंगे, उनके सामने ही आप सभी लोग दवा खाएं। MDA अभियान के दौरान हर साल यह दवा खाने से आप खुद को और अपने परिवार को फाइलेरिया से बचा सकते हैं। याद रहे, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव ना होने दें और MDA के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। तो क्या समझे, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलके रोकेंगे फाइलेरिया।

0: नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक कहावत है, सेहत है तो सब है, वरना सब कुछ होकर भी कुछ नहीं। तो स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM पर, और शो का नाम है सेहत सही लाभ कई।
1: और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे नंदनी त्यागी, जो आज आपके लिए सिर्फ सेहत का ज्ञान नहीं बल्कि सेहत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से और जरूरी बातें भी लेकर आई है।
0: और मैं हूँ आपका दोस्त और आपका हम सफर आरजे शशि कपूर। दोस्तों, आज का विषय है एक ऐसी बीमारी जो सुनने में पुरानी लगती है पर अब भी गांव-गांव गली-गली में मौजूद है।
1: जी हाँ, और लोग इसके बारे में खुलकर बात भी नहीं करते। बीमारी का नाम है फाइलेरिया, जिसे लोग हाथी पांव भी कहते हैं।
0: देखो, बीमारी का नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं, डर तो तब है जब हम चुप रहें, इलाज ना करवाएं और बचाव की दवा ना लें।
1: हमारे यहाँ कहावत है, समय रहते जो सावधान, बीमारी भागे जैसे शैतान। तो चलिए, आज की चर्चा में हमारे साथ हैं गांव-गांव घूमकर लोगों को सेहत का पाठ पढ़ाने वाले हमारे प्यारे सेहतिया सिंह भैया।
2: नमस्कार भाइयों और बहनों, कहते हैं बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, अनदेखा मत करो। मैं हूँ आपका अपना सेहतिया सिंह। आज हम बात करेंगे फाइलेरिया से कैसे बचे, अगर हो जाए तो क्या करें, और सबसे जरूरी अफवाह से कैसे बचें।
1: भैया, सबसे पहले साफ साफ बताइए, ये फाइलेरिया है क्या?
2: देखिए, फाइलेरिया एक बीमारी है जो एक छोटे से कीड़े फाइलेरिया वर्म से होती है। ये कीड़ा हमारे शरीर में तब पहुंचता है जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटकर फिर किसी और को काटता है।
0: यानी मच्छर इधर से उधर बीमारी ले जाने वाला चालाक डाकिया है।
2: बिल्कुल, और ये बीमारी धीरे धीरे असर दिखाती है, कई बार सालों तक कोई लक्षण नहीं आते लेकिन अंदर बीमारी बढ़ती रहती है।
1: भैया, श्रोता कैसे पहचानेंगे कि उन्हें फाइलेरिया है?
2: शुरुआत में हल्का बुखार बार बार होना, हाथ पैर में हल्की सूजन, त्वचा पर लाल या काले धब्बे, थकान और कमजोरी, और आगे चलकर हाथ पैर या अंडकोश में स्थायी सूजन, सूजन वाला हिस्सा भारी हो जाना, रोजमर्रा का काम करने में परेशानी, ये सब लक्षण होते हैं फाइलेरिया के।
0: बिल्कुल सेहतिया भैया, एक कहावत है, बीमारी के पहले पग में ही पहचान हो जाए तो इलाज आसान हो जाए।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा, क्या ये छूने से फैलता है?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ मच्छरों से फैलता है। अगर मोहल्ले में किसी को फाइलेरिया है और मच्छर ज्यादा है तो बाकी लोग भी खतरे में है।
0: यानी मच्छर सिर्फ काटते नहीं बीमारी भी बांटते हैं, तो इन मच्छरों से बचने का क्या तरीका है?
2: मच्छरों से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, नालियों की सफाई जरूरी है, और रात में पूरी बाहों के कपड़े पहनें।
1: बिल्कुल, जैसे कहावत है, मक्खी मच्छर घर में, सेहत जाती दर में।
0: बहुत सही कहा आपने, लेकिन इसके बचाव की दवा क्या है सेहतिया भैया?
2: इसे कहते हैं MDA, यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। साल में एक बार पूरे गांव या मोहल्ले को ये दवा दी जाती है और ये बिल्कुल मुफ्त है।
1: और ये दवा मिलती कहाँ है?
2: सरकारी अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में। मैं तो कहूँगा अगर किसी को भी लक्षण है फाइलेरिया के तो वो बिना देरी किए अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच करवाए और दवा खाए। इसमें 2 या 3 गोलियां होती हैं जो खाने से आपके शरीर में मौजूद कीड़े मर जाते हैं और बीमारी फैलने का खतरा खत्म हो जाता है।
0: बिल्कुल सेहतिया भैया, और याद रहे, ये दवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मौजूदगी में लें, खाली पेट नहीं और पानी के साथ लें।
2: और हाँ, 2 साल से छोटे बच्चों को ये दवा नहीं दी जाती, गर्भवती महिलाओं को भी ये दवा नहीं दी जाती, और गंभीर बीमारी वालों को डॉक्टर से पूछ कर ये दवा दी जाए। बाकी सभी चाहे बीमारी हो या ना हो, ये दवा जरूर लें।
1: भैया, आप अफवाहों की भी हवा निकाल दीजिए।
2: बिल्कुल, सबसे बड़ी अफवाह तो यह है कि फाइलेरिया सिर्फ गंदे लोगों को होती है, बल्कि सच्चाई ये है कि फाइलेरिया गंदगी से नहीं मच्छरों से फैलता है। तो जहाँ गंदगी होगी पानी का ठहराव होगा, गंदा पानी जमा होगा वहाँ मच्छर होंगे, और जहाँ मच्छर होंगे वहाँ तो बीमारी होगी ही। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संक्रमित व्यक्ति को मच्छर ने काट लिया और उसके बाद किसी और व्यक्ति को काटा तो उस व्यक्ति को भी यह बीमारी हो सकती है।
1: और कौन सी अफवाहें हैं?
2: एक अफवाह फाइलेरिया की तो ये है, उसकी दवा को लेकर लोगों को यह भ्रम है कि फाइलेरिया की दवा खाने से शरीर में कमजोरी आती है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। दवा कमजोरी नहीं लाती बल्कि बीमारी से बचाती है। हाँ, अगर शरीर में पहले से संक्रमण है तो हल्का बुखार या सिर दर्द हो सकता है, लेकिन यह जल्दी ठीक हो जाता है।
0: यानी दवा से कोई नुकसान नहीं होता?
2: बिल्कुल नहीं, बल्कि दवा ना खाने से नुकसान होता है।
1: और भी कोई गलत फहमियाँ हैं?
2: कई लोगों को ये गलत फहमी होती है कि फाइलेरिया लाइलाज बीमारी है, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर समय रहते दवा ले ली जाए तो फाइलेरिया होगा ही नहीं। अगर किसी को हो भी जाए तो डॉक्टर की सलाह से इसका सही इलाज संभव है, सूजन को कंट्रोल कर सकते हैं, मरीज को राहत मिल सकती है, लेकिन फाइलेरिया एक बार हो जाए तो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ता है।
0: तो सिहतिया भैया, आपके कहने का मतलब है अगर जागरूक रहे तो इस बीमारी से बच सकते हैं।
2: बिल्कुल, साथ ही कई अज्ञान लोगों को लगता है कि सरकारी दवाई में साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए नहीं खानी चाहिए, बल्कि सरकार की दवा पूरी तरह से सुरक्षित होती है। यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होती है और लाखों लोगों को दी जाती है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता।
1: तो दोस्तों, आपने अभी सुनी फाइलेरिया से जुड़ी अफवाहें और उनकी सच्चाई। कहावत है, अफवाह का इलाज सच की बात। ये भी तो बताइए कि किसी को फाइलेरिया हो जाए तो उसे करना क्या चाहिए।
2: अगर फाइलेरिया हो जाए तो सूजे हिस्से को रोज साबुन और साफ पानी से धोएं, त्वचा को सूखा रखें, सूजे पैर को ऊंचाई पर रखकर सोएं, डॉक्टर के बताए व्यायाम करें।
1: सेहतिया भैया, फाइलेरिया वाले रोगी का खाना पीना कैसा होना चाहिए?
2: ऐसे रोगी को हमेशा प्रोटीन वाला खाद्य जैसे दाल, दूध, अंडा, मछली, पनीर के साथ साथ विटामिन सी जैसे संतरा, नींबू, अमरूद, आंवला का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों खाना जरूरी है और खूब पानी पिए। तला भुना जंक फूड, मीठा कम लेना चाहिए।
0: सिहतिया भैया, एक बात तो साफ है कि बीमारी चाहे कोई भी हो, अगर सरकार, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जनता मिलकर काम करे तो बीमारी टिक ही नहीं सकती। लेकिन सिहतिया भैया, मेरे मन में एक सवाल है कि राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भी तो सरकार बहुत मदद करती है।
2: बिल्कुल, सबसे पहले तो फाइलेरिया के प्रसार को रोकना और उसे जड़ से खत्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA के तहत सरकार हर साल सामूहिक रूप से दवाइयां मुफ्त में वितरित की जाती हैं। फाइलेरिया के मरीजों को हाइड्रोसेल सर्जरी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त करवाने की सुविधा दी जाती है। साथ ही निवारक, देखभाल और प्रबंध कार्यक्रम के तहत सूजन को कम करने के लिए मुफ्त दवाइयां, साफ सफाई और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी दी जाती है। समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, जहां जांच, परामर्श और दवाइयां दी जाती हैं। एक और खास बात, इस बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाता है, जिससे मरीजों को मुफ्त इलाज मिल सके।
0: सिहतिया भैया, सरकार ने तो अनेक बीमारियों के उन्मूलन के लिए टारगेट घोषित कर दिए हैं, क्या इनको पूरा कर पाना संभव होगा?
2: जब तक टारगेट सेट नहीं करेंगे तब तक जन आंदोलन कैसे चलाएंगे। इसको जन अभियान बनाने के लिए मंजिल होनी चाहिए। दूसरी बात, टारगेट पूरा कौन करेगा, आप और हम? जब तक अपनी सेहत की जिम्मेदारी हम खुद नहीं लेंगे, तब तक सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, टारगेट कैसे मीट करेंगे।
0: बिल्कुल सही। तो दोस्तों, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हम सब की है, यह तो सिहतिया भैया सही कह रहे हैं। अगर हम खुद आगे नहीं आएंगे टेस्ट करवाने के लिए, दवाइयां लेने के लिए, बीमारी को छिपाएंगे तो इलाज कैसे होगा। इसीलिए सभी को जागरूक होना होगा, तभी ये टारगेट पूरा हो पाएगा। सिहतिया भैया, एक और सवाल, क्या लोग इसलिए भी दवा नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि जब कोई लक्षण नहीं तो फालतू में दवाई क्यों लें? तो आप लोगों को कैसे समझाते हैं?
2: यह भी बहुत जरूरी मुद्दा है। दरअसल जैसा मैंने बताया, अगर आपके गांव में, जिले में किसी को भी यह गंभीर बीमारी हो तो आपको भी इस बीमारी का खतरा है। जब तक हाथी पांव के लक्षण दिखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए भले ही किसी को कोई समस्या ना हो फिर भी उन्हें यह दवा लेनी चाहिए। सरकार यह दवा मुफ्त में देती है ताकि हर कोई सुरक्षित रह सके।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने यह दवा नहीं खाई तो फाइलेरिया खतरा बना रहेगा।
2: बिल्कुल सही। अगर कोई भी व्यक्ति यह दवाई खाने से चूक जाता है तो वह अपने साथ साथ पूरे समाज को खतरे में डालता है। फाइलेरिया से बचाव से दवाई से ही संभव है। अगर सभी लोग समय पर दवा खाएं तो यह बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। अगर हम लापरवाह रहें तो यह पूरे गांव और समाज को प्रभावित कर सकती है।
0: तो दोस्तों, MDA के राउंड चल रहे हैं और मुफ्त दवाइयां वितरण हो रही हैं। तीनों दवाइयां खाइए, अफवाहों से बचें, घर बैठे सही जानकारी पाएं। आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: तो भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं, हाथ जोड़े और हमारे साथ शपथ लें।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जाँच और टीकाकरण करवाएंगे, अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। बहुत बहुत शुक्रिया सेहतिया भैया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाइयां जरूर खाएं। सेहतिया भैया के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

फाइलेरिया के बारे में मैंने सुना तो था। हमारे गांव में एक दो फाइलेरिया के मरीज भी थे, पर हमने ज्यादा सोचा नहीं और घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। कभी नहीं लगा कि ये हमको भी हो सकता है। बड़ी गलती कर दी। अब ठीक तो नहीं हो सकता, सिर्फ रोकथाम की जा सकती है।

0: फाइलेरिया का संक्रमण आपके शरीर में किसी भी उम्र में हो सकता है। इसे बीमारी में बदलने में लंबा समय लगता है, पर ये एक बार हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है।
1: सिर्फ हाथी पांव एवं हाइड्रोसिल ही नहीं,
0: फाइलेरिया के कारण
1: स्तन में सूजन एवं धात रोग भी हो सकता है।
0: भारत के कई क्षेत्रों में अभी भी बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में। वैसे फाइलेरिया से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर साल सरकार
1: MDA अभियान के दौरान
0: प्रभावित क्षेत्रों में
1: फाइलेरिया से बचाव की दवा निःशुल्क खिलाती है। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी दवा लेकर आपके घर आएंगे, उनके सामने ही आप सभी लोग दवा खाएं। MDA अभियान के दौरान हर साल यह दवा खाने से
0: आप खुद को और अपने परिवार को फाइलेरिया से बचा सकते हैं। याद रहे, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव ना होने दें और MDA के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। तो क्या समझे, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलके रोकेंगे फाइलेरिया।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
2: Ole ole ole. Oh, Shonak. हेलो, कौन?
3: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
4: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
3: जल्द मिलते हैं।
2: हेलो हेलो हेलो,
5: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
6: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
8: The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
6: काकी आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
5: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
6: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
5: दुल्हन सुंदर ही नहीं समझदार भी है।
7: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
8: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
10: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
11: अरे सुनीता कैसी है मुनिया?
12: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
11: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
12: जी दीदी, जैसा आपने बोला था हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे, सब की साफ सफाई करते हैं।
13: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते दीदी।
11: बहुत बढ़िया,

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि

0: तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशारदा 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसे, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

0: सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर और लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। तो किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे दुधारू पशुओं की देखभाल की और साथ ही साथ आप मोटे अनाज की खेती यानी कि श्री अन्न की खेती कैसे कर सकते हैं। पहले तो आप करते थे लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया था जहां पर आपने मोटे अनाज की खेती करना छोड़ दिया, लेकिन आज के समय में मोटे अनाज की बाजार में बहुत मांग है और अच्छी कीमत में आप इनको बेच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुधारू पशुओं की। जी हाँ किसान मित्रों, हमारे जो पशु हैं और हमारी जो खेती है वो एक दूसरे के पूरक हैं। खेती से हमें 3 महीने में 6 महीने में उत्पादन मिलता है, लेकिन पशुओं से कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है और साथ ही साथ हमारे जो दुधारू पशु हैं वो घर का खर्च चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब कभी खेती में नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई पशुओं के द्वारा हो जाती है। तो इस तरह से खेती का और पशुपालन का तालमेल चलता रहता है और जो किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो उनको खेती में भी घाटा नहीं होता है, फायदा ही फायदा होता है। तो किसान मित्रों, दुधारू पशु हमारी आय को दोगुना करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ पशु देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं, लेकिन कई बार पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं जिसके कारण हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पशुपालकों को पशुओं को रोगों से बचाने के लिए पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। अगर हम पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोगों के बारे में बात करें तो वो है गलाघोटू, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी और तिल्ली या बागी रोग शामिल है। तो किसान मित्रों, अगर आपको इन बीमारियों का कोई भी संक्रमण आपके पशुओं में दिखे तो आप तुरंत पशुओं के डॉक्टर से बात करें। किसान मित्रों, खुरपका मुंहपका रोग जिसको संक्षिप्त रूप में FMD कहते हैं, ये बीमारी गाय भैंस में बड़ी शीघ्रता से फैलती है और एक प्रकार के विषाणु से उत्पन्न होती है। ये रोग गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों और सूकरों में भी हो जाता है। इस बीमारी में जीभ के नीचे मसूड़ों, थनों और खुरों में छोटे आकार के छाले फपोले पड़ जाते हैं। पशुओं को तेज बुखार होता है और जुगली करना पशु बंद कर देते हैं। दूध उत्पादन भी कम हो जाता है, पशुओं के मुंह से लार गिरने लगती है और पशुओं के थनों पर छालों से कभी कभी थनेला की बीमारी हो सकती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये रोग स्वस्थ पशु के बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से और लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु बीमार पशु की लार, मुंह, खुर और थन में पड़े फपोलों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसान मित्रों, अब बात आती है कि आप अपने दुधारू पशुओं को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। तो उसका सही और सीधा रास्ता ये है कि आप अपने सभी पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव के लिए सर्वोत्तम है। इसीलिए पशुओं को FMD के वर्ष में 2 बार टीके अवश्य लगवाने चाहिए। तो अपने पशुओं का टीकाकरण करवाने के लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय जा सकते हैं, वहां पर बात कर सकते हैं और अपने पशुओं का टीकाकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा बीमार हो जाने पर रोगग्रस्त पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए। बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देनी चाहिए। रोग से प्रभावित क्षेत्र से पशु नहीं खरीदना चाहिए। पशुशाला को साफ सुथरा रखना चाहिए। संक्रमित पशुओं को पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे उनको खनिज और विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती रहे और समय समय पर पशु चिकित्सक का परामर्श लेते रहना चाहिए। तो इन सब बातों का किसान मित्रों आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो पशु हैं वो रोग मुक्त रहेंगे और आपको आर्थिक लाभ पहुंचाते रहेंगे। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही कि हम अपने दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बलराम बैसला से ये उपदेश। किसान मित्रों, मोटे अनाज जिनसे आप बखूबी परिचित होंगे और पहले आप इनको खूब करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपने इनको करना छोड़ दिया। लेकिन वर्तमान समय की हम बात करें तो आजकल बाजार में हर जगह, हमारे देश के अलावा विदेशों में भी मोटे अनाजों की मांग बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर आप मोटे अनाज की खेती करते हैं तो एक तो आप स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, इनका सेवन करेंगे, दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे और साथ ही साथ आपकी आमदनी भी अच्छी होगी, क्योंकि मोटे अनाजों की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। अब किसान मित्रों, मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मोटे अनाजों को सुपर फूड और पोषक अनाज कहा जाता है। किसान मित्रों, बाजरा जैसे मोटे अनाज को भविष्य का अनाज तक कहकर संबोधित किया जा रहा है। इससे बखूबी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से आने वाले भविष्य में कितना महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। भारत में बाजरा, ज्वार, सवा, कुटकी, कोदो, रागी, कंगनी, चीना, कुट्टू और चोलाई प्रमुख रूप से मोटे अनाज या यूं कहें श्री अन्न पैदा किए जाते हैं। अब किसान मित्रों, बात करेंगे हम कि मोटे अनाजों की इतनी आजकल मांग है, आखिर क्या वजह है, क्या ऐसे गुण इनमें पाए जाते हैं जो कि बाजार में इनकी मांग बहुत ज्यादा है, लोग अब बहुत ज्यादा मोटे अनाजों को खाना पसंद कर रहे हैं। तो ये बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं प्रीति चौधरी।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रीति चौधरी से ये देशभक्ति रागनी। और इस रागनी से पहले हम बात कर रहे थे कि आजकल जो श्री अन्न है, मोटे अनाज है, उनकी मांग क्यों बढ़ रही है, क्यों लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्यों उनको खरीद रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मोटे अनाज है वो गुणों की खान है और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनमें पाया जाने वाला रेशा जो खूब मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाई बीमारियां हम झेलते हैं, मोटा

और कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप ऐसी खेती करें जिसमें आपको फायदा ज्यादा हो और खेती में लागत कम आए। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मोटे अनाज की खेती की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा महाभारत का और गायक कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे महाभारत के किस्से से ये रागनी। गायक कलाकार थे लोकेंद्र सिंह। इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर होगी इसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना।

अब तो नारद जी हताश हो जाते हैं और उधर सावित्री के पिताजी अश्वपति, उन्होंने सोचा इकलौती पुत्री है, हो सकता है इसके दिलो दिमाग में आ जाए और कहने लगे, बेटी मेरी एक बात सुन,

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: मेहरवानो, सत्यवादी हरिश्चंद को कालिया भंगी ने खरीद लिया 30 भार सोने में, और उधार तारावती और रोहतास को रामलाल पंडित जी ने खरीद लिया 30 भार सोने में। मेहरवानो, आज 60 भार सोना विश्वामित्र का जो कर्ज के रूप में था पटा दिया। उस मौके का जिक्र कि जब हरिश्चंद कालिया भंगी ने भेजा नदी पर जल भरने के लिए और उधार तारावती, रामलाल पंडित जी ने जल भरने के लिए भेजी थी। दोस्तों, आज महारानी तारावती और सत्यवादी दानी हरिश्चंद का भंगी के रूप में और तारा का ब्राह्मणी के रूप में मिलन होता है, तो कैसे 30 दिन का भूखा हरिश्चंद आज अपनी पतिव्रता ब्याहता से घड़ा उठाने के लिए कह रहा है।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। ये एक संक्रामक रोग है जो आनुवांशिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब इस रोग की चपेट में आ सकता है। टीबी का 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है। 2 हफ्ते लगातार दवा खाने के बाद बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं रहता। टीबी हाथ मिलाने, शौचालय इस्तेमाल करने, खाना और बर्तन बांटने से नहीं फैलता। आइए टीबी के मरीज से भेदभाव न करें और मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 MHz, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुशीनगर का एकमात्र रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM। मैं छाया हूं और आज बात करने वाले हैं हम घरेलू हिंसा के बारे में। मतलब हिंसा का नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये होती क्या है। तो आइए सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर घरेलू हिंसा वास्तव में होती क्या है। घर में ही किसी अपने के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा कहते हैं, लेकिन वो किया गया दुर्व्यवहार कई तरह से हो सकता है। हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरह की हिंसा की शिकार हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि उनके साथ जो भी होता है वो हिंसा ही है और किस तरह की हिंसा है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इन सब चीजों से अपरिचित है। लेकिन छाया आपको घरेलू हिंसा के हर रूप से परिचित कराएगी और इसके बारे में जानकारियां भी देगी। और आज हम मानसिक, मौखिक या फिर भावात्मक हिंसा के बारे में बात करेंगे। मानसिक हिंसा हम आपको कहानियों के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि आखिर यह हिंसा क्या होती है और इससे बचने के लिए आप कौन कौन से कदम उठा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी घरेलू हिंसा की आज की ये कहानी। आज की ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो आंखों में एसआई का सपना लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी लगन से मेहनत कर रही है, लेकिन उसके पिताजी ठेला चलाते हैं। लड़की जिसका नाम निष्ठा है, जी हाँ निष्ठा, अपने पिताजी को ठेला चलाते देख ये सोचती है कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि अपने पिताजी का नाम रोशन कर दूंगी और उन्हें इस ठेले की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को मन में लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। अब जिसके पिताजी ठेला चलाते हो, आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि उनके घर की स्थिति क्या होगी। बहुत ही दयनीय स्थिति होने के बाद भी निष्ठा अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन निष्ठा को जानने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निष्ठा की टांग खिंचाई करते हैं और ये कहते हैं कि एक ठेला चलाने वाले की लड़की अब ऐसा ही बनेगी। ऐसे दिन आ गए हैं कि हम जैसे लोग पड़े रह जाएंगे और ठेला चलाने वाले की लड़की हम पर हुक्म चलाएगी। ऐसी बातें निष्ठा को रोज सुनने को मिल रही है, लेकिन फिर भी इन बातों को इग्नोर करते हुए वो अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रही है। एक दिन निष्ठा अपने पिताजी से कहती है कि मुझे प्रिपरेशन के लिए कहीं दूर जाना है और उसके लिए पैसे चाहिए। पिताजी चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं। फिर भी वो हार नहीं मानते हैं और पैसों का इंतजाम करने में जुट जाते हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं हो पाता उनके पास जिससे कि वो निष्ठा की पढ़ाई के लिए दे पाए। शाम को जब निष्ठा के पिताजी अपना काम खत्म करके घर आकर बड़े निराश होकर बैठे रहते हैं, तो निष्ठा पिताजी को देखती है और पूछती है कि पिताजी क्या बात है, आप इतने निराश क्यों हैं? बड़े झिझकते हुए वो बताते हैं कि बेटा मेरे पास उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं जिससे मैं तुम्हारी तैयारी के लिए दे पाऊँ। निष्ठा पिताजी को समझाती है और कहती है कि निराश मत होइए, सब अच्छा होगा। ये बोलकर निष्ठा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन इस बात की चिंता उसे भी होने लगती है कि आखिर पैसे आए तो आए कहाँ से। निष्ठा इस चिंता में तो रहती ही है कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन उसके साथ साथ उसे लोगों की बातें भी सुननी पड़ रही थी। और एक दिन निष्ठा की पड़ोस में रहने वाली एक आंटी निष्ठा के पास आई। काफी देर तक उन्होंने निष्ठा से बातें की और बातों बातों में निष्ठा ने अपने दिल की बात आंटी को बताया। निष्ठा ने बताया कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं हैं मेरे आगे की पढ़ाई के लिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे आगे की पढ़ाई कैसे होगी। इस पर पड़ोस की आंटी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम एसआई बन पाओ, तुम्हें तो इतने बड़े बड़े सपने ही नहीं देखने चाहिए, कम से कम अपने पिता की स्थिति तो देख लेती पहले। ये सारी बातें निष्ठा के मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही थी, कहीं ना कहीं वो अपने सपने से पीछे हट रही थी। इन सारी परेशानियों के साथ निष्ठा की जिंदगी कट ही रही थी कि उसके पिताजी के पास उसके लिए एक रिश्ता आया। रिश्तेदारों ने बताया कि लड़के वालों को दहेज नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सिर्फ एक अच्छी लड़की चाहिए जो घर को परिवार को अच्छी तरह संभालने में निपुण हो। निष्ठा के पिताजी ने उससे इस बारे में बात की और निष्ठा को समझाया कि मैं तुमको पैसे नहीं दे पा रहा हूँ पढ़ाई के लिए, लेकिन ससुराल जाने के बाद तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर तुम्हें जरूर पढ़ाएंगे। उसने भी सोचा कि पिताजी के पास पैसे नहीं हैं, हो सकता है कि शादी के बाद मेरे सपने पूरे हो जाए। ये सोचकर निष्ठा ने शादी के लिए हाँ कर दी। निष्ठा की शादी हुई और वो अपने ससुराल चली गई। वहाँ जाने के बाद उसे

पता चला कि उसके ससुराल में महिलाओं का बाहर जाकर कोई जॉब करना पसंद नहीं किया जाता था। ये जानते हुए भी निष्ठा ने एक बार अपने पति से और अपने ससुर से इस बारे में बात की कि मुझे SI बनना है और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ये बात सुनकर निष्ठा के पति ने बोला कि मेरे घर में मैं अपनी बीबी की कमाई नहीं खा सकता, मेरे होते हुए तुम बाहर जॉब नहीं करोगी, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत है मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकती। निष्ठा ने अपने ससुर से इस बारे में बात की और उनका भी जवाब यही था कि हमारे घर में औरतों की कमाई नहीं खाई जाती और इसलिए ना तुम आगे पढ़ाई करोगी और ना ही बाहर जाकर जॉब करोगी। उस वक्त तो निष्ठा चुप हो गई, लेकिन वो हार नहीं मानी और वो चुप चुप कर कमरे में पढ़ाई करती थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी हो सकता है कुछ दिनों बाद मेरे पति और मेरे ससुर मेरी पढ़ाई के लिए मान जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसकी सास जो निष्ठा से दिन भर काम करवाती थी, जब उसे ये बात पता लगी कि निष्ठा SI की तैयारी करना चाहती है, तो उसने इस बात पर आपत्ति जताई और उसने कहा कि एक तो हमने तुमसे 1 रुपया दहेज भी नहीं लिया और ऊपर से हमारे घर में महिलाएं बाहर जाकर काम नहीं करती हैं, इस बात को तुम दिमाग में बैठा लो। इन सारी बातों का निष्ठा के दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से काफी बीमार रहने लगी, लेकिन फिर भी काम तो करना ही था। एक दिन निष्ठा ने टीवी पर एक सीरियल देखा। उस सीरियल में एक महिला ने अपने प्रति हो रहे हिंसा से बचने के लिए पुलिस की मदद ली। उस सीरियल से निष्ठा इतनी इंस्पायर हुई, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। उसके दिमाग में ये बात आई कि वो पुलिस की मदद लेकर अपने सपनों को पूरा कर सकती है। निष्ठा पास ही के महिला थाना में पहुंची और वहां के महिला थाना अध्यक्ष से उसने पूरी बात बताई।

निष्ठा की बात सुनने के बाद महिला थाना अध्यक्ष समझ चुकी थी कि निष्ठा के साथ मानसिक तौर पर हिंसा हो रही है और उन्होंने इस बात की जानकारी पूरी डिटेल से निष्ठा को दी। उन्होंने बताया कि निष्ठा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है या हो रहा है वो तुम्हारे साथ मानसिक तौर पर हिंसा हो रहा है। हिंसा के कितने रूप होते हैं, उन सभी प्रकार के हिंसा को महिला थाना अध्यक्ष ने निष्ठा को समझाया।

कहानी में आपने निष्ठा के बारे में जाना कि उसने अपने साथ हो रहे हिंसा को किस तरीके से रोका। हमारे देश में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हमेशा न्यूज़पेपर या फिर टीवी सीरियल में आप देखते होंगे कि महिलाओं के साथ अलग अलग तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है। निष्ठा की तरह हमारे देश में न जाने कितनी महिलाएं हिंसा की शिकार हैं और उसे सह रही हैं। इसका कारण सिर्फ ये है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो हिंसा है और इस हिंसा को किस तरीके से रोका जाए।

कुछ महिलाएं तो ये सोचकर चुप हो जाती हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वाला हमारा पति या हमारा बेटा है या हमारा कोई सगा रिश्तेदार है। महिलाएं अपने साथ हो रहे हिंसा पर रोक लगा सकती हैं। अगर आपके साथ हिंसा हो रही है तो आप इसकी जानकारी अपने किसी करीबी को दे सकती हैं। या फिर अगर आपके आसपास किसी के साथ हिंसा हो रही है तो आप उन्हें भी महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 या 112 पर कॉल करके बचा सकती हैं।

इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं जिससे घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है, जैसे महिला थाना, वन स्टॉप सेंटर या महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क करके। अगर आपके साथ हुई हिंसा का कोई भी सबूत आपके पास है तो उसे भी आप पुलिस से जरूर साझा करें। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक कानून बनाया गया है जिसके तहत आप अपने साथ हो रहे हिंसा की शिकायत कर सकती हैं।

ये अधिनियम घर में मौजूद महिलाओं जैसे पत्नी या फिर साथ रह रहे जोड़ीदार, बहनों, माताओं, बेटियों, पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों से रक्षा करता है। इस अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार करने वाले को कोई दंड या जुर्माना नहीं लगाया जाता, लेकिन अदालत द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करने वाले को दंडित जरूर किया जा सकता है। हमें हिंसा को सहकर उसे बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमें हिंसा पर रोक लगाना है और ये कहना है कि सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो। इस कहानी में आपने सुना कि निष्ठा के ससुराल के लोगों के द्वारा उसकी पढ़ाई पर रोक लगा दिया जाता है और उसे नौकरी करने से भी मना कर दिया जाता है, ये कहकर कि हमारे घर की परंपरा है कि महिलाएं बाहर काम नहीं करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि निष्ठा के मायके में उसके पिता द्वारा भी मानसिक तौर पर हिंसा देखी गई है। एक महिला के साथ सिर्फ उसके ससुराल में ही नहीं बल्कि मायके में भी हिंसा हो सकती है। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी चुप्पी तोड़ें और आवाज उठाएं, बोलें हिंसा को नो।

0: उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई कहानी के माध्यम से ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी। और आप सभी के साथ भी अगर इस तरह की हिंसा हो रही है तो इसकी जानकारी आप हमें 9113198119 इस नंबर पर दे सकते हैं। आप ये कार्यक्रम स्मार्ट एनजीओ और रेडियो प्रज्ञा द्वारा सुन रहे हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त, मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120406025 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शाओ 90.8।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त

हम सफर हम राज हो ता कयामत

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माँ जी, मुझे टीबी है।
1: टीबी और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दे।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरे। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: 5 साल तक नियमित रूप से अपने शिशु का वजन कराएं।
2: अगर उम्र है ज्यादा और वजन है कम
1: तो नहीं है आपके आहार में दम,
2: न घेरे आपके बच्चे को कोई बीमारी।
1: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से पाएं अपने बच्चे की वृद्धि की जानकारी।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
2: इस तरह सुपर हीरो जल रक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
3: वाओ, जल रक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
2: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
4: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता हूँ।
3: अरे चमन पानी वेस्ट कर रहा है। लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
4: अरे तारा ये क्या?
3: तारा नहीं, जल रक्षक तारा।
5: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी
6: जल रक्षक
5: खुद निगरानी।
3: हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
4: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
3: और नल या पाइप में केवल एक लिक्विड से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
4: अरे बाबा रे,
3: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
4: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: चलो चमन, अब हम खेलें।
1: ओके। तारा, मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
0: पीने का पानी? चमन रुको, हाथ को खड़ी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
2: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
0: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है, कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
2: हैं?
0: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देते, और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
3: अरे बाबा रे, तो फिर

0: बात तो ठीक है जल रक्षक तारा, पर पानी की जांच होगी कैसे?
1: चलो चलो अप्पा से पूछते हैं।
2: ओके
1: अप्पा।
3: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
2: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
3: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: पानी में गंदे हाथ या गंदे बर्तन।
1: नो नो नो नो,
2: समझ गया। अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
3: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
4: कहीं पानी बर्बाद हो रहा है,
2: लगता है वहाँ जल रक्षकों की जरूरत है।
4: चलो।
0: तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो, आज से अभी से शुरू करो। खुद का पानी खुद निगरानी।

सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार
2: और विमलेश का भी नमस्कार। श्रोताओं, आप लोगों द्वारा भेजे गए पत्र और संदेश सचमुच हमारा उत्साह बहुत बढ़ाते हैं।
0: और श्रोताओं, इसलिए हम और अधिक प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम को कैसे और अधिक रोचक बनाया जाए।
2: तो इसी प्रकार से हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए और
0: संदेश के साथ साथ सुविचार भी भेजते रहिए। तो आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
2: हमारा पहला प्रश्न था,
0: हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, उनका नाम और उपनाम क्या है?
2: इसका उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। उनका असली नाम था श्री धनपत राय श्रीवास्तव।
0: और श्रोताओं, अब हमारा दूसरा सवाल था, मोहनदास करमचंद गांधी को दो उपाधियां मिली थी, राष्ट्रपिता और महात्मा, ये नाम किसने दिए थे?
2: तो साथियों, इसका सही उत्तर है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और महात्मा की उपाधि दी थी महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
0: जी, हमारा तीसरा प्रश्न था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने लिखा था?
2: तो इसका सही जवाब है, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख लिखा था।
0: और अब हमारा चौथा प्रश्न था कि किस राज्य या संघ राज्य को फलों की टोकरी कहा जाता है? आपके विकल्प थे उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, गोवा और हिमाचल प्रदेश।
2: तो साथियों, इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश।
0: जी हाँ, हिमाचल प्रदेश को फलों की टोकरी भी कहा जाता है। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और सरदार का विशेषण किसने दिया था?
2: तो इसका सही उत्तर है साथियों, महात्मा गांधी जी ने बारडोली सत्याग्रह में अपने महान संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार और लौह पुरुष की उपाधि दी थी।
0: तो श्रोताओं, आइए, ये तो हुए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो आइए अब सुनते हैं आज का सुविचार।
2: तो आज का सुविचार है, परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा।
0: परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना होगा। और ये सुविचार हमें भेजा था ग्राम खकल, तहसील कोंच, जिला जालौन, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से ठाकुर दीपक सिंह गुर्जर ने।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।
0: और श्रोताओं, हमें संदेश जिन श्रोताओं ने भेजा था उनके नाम अब इस प्रकार से हैं, ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, श्रीमती कल्पना चंसौलिया,
2: राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
0: यवतमाल विदर्भ यानी महाराष्ट्र से संतोष खड से और विनोद खड से,
2: करगी रोड, कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से एकता गुप्ता, उषा, ज्ञानचंद्र गुप्ता, आस्था, अभय, जयदीप गुप्ता,
0: और अपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान, अबान और परिवार के अन्य सभी सदस्य गण।
2: तो आइए अब सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न। प्रश्न है,
0: संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है?
2: प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं,
0: संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है?
2: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे चिरपरिचित नंबर 8800440559 पर।
0: और हमारा ईमेल भी याद रखें, यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप हमारे प्रश्नों के उत्तर या अपना संदेश भेज सकते हैं।
2: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है लंका विजय भाग 2।
0: जी हाँ, पिछली बार आपने सुना था भाग 1
2: जी,
0: और अब प्रस्तुत है भाग 2।

0: अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी, क्रोध से बिलबिलाता हुआ।
1: लंका अनाथ हो गई, अब उसका कोई सहारा नहीं, अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा।
0: लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला दिया, मार काट मच गई। जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंघ, यूपाक्ष, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशरा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्ध नाद हुआ।

0: अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला। फुफकारते हुए हन कुचले सांप की तरह वो जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए रावण के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम उनके सामने रावण की एक ना चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए ये देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वो बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने ये देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा,
1: रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी। तेरा अंत निश्चित है।
0: उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वो सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े।

राम रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी, थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गईं, पलकें झुकना भूल गईं। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रथ की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया। घोड़े और रथ बदलने राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। ये पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वो रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी।

0: उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया, जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका का विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी, शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वो अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल विलाप करता हुआ। अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा।
1: ओ बंधु,
2: मित्र विभीषण, शोक मत करो। रावण महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मित्र, मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो।
1: प्रभु,
0: राम ने एक एक वानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया।
2: हनुमान प्रभु, ये संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है।
3: जैसी आज्ञा प्रभु।
2: उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए
3: प्रभु।
0: विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जटित। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा,
3: प्रभु, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई।
2: हनुमान,
3: वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं।
2: सीते,
0: तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा,
2: लंकापति,
3: प्रभु,
2: सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहां लाने की व्यवस्था की जाए।
3: जो आज्ञा।
0: वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी।

एक वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी, कष्ट इतिहास हो गया

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा,
1: दीक्षा। आइए अब सुनते हैं दूसरा कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम से पहले एक खास बात।
2: श्रोताओं, आप जानते हैं कि भारत अब चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 की सफलता से सारे विश्व में भारत की सराहना हो रही है।
1: तो इसी क्रम में आइए सुनते हैं चंद्रमा पर ही एक कार्यक्रम, यानी एक विज्ञान गीत।
2: और इस विज्ञान गीत का शीर्षक है चंदा की छुट्टी।

0: नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
0: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
1: एफएम। लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं। और पंचम मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़ी से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छान कर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं अरुण, मुझे आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।
1: धरती मेरी धरती।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी मौसम मौसम लवली मौसम। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि मानसून का मतलब बारिश नहीं होता। हर मानसून में बारिश भी नहीं होती। हर मानसून के पीछे कुदरत की कई क्रियाएं काम करती हैं। तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी मौसम मौसम लवली मौसम।

0: अरे सृष्टि, ओ सृष्टि।
1: जी मम्मी।
0: ये नल तो बंद कर ना, पानी बह रहा है कब से।
1: अच्छा,
0: और सुन, वो मानव को तो आवाज लगा, सुबह से न जाने क्या कर रहा है छत पे।
1: अरे करेगा क्या मम्मी, छत पर आज बहुत सारी पतंगे आ रही हैं, बस उन्हें इकट्ठा कर रहा होगा।
0: ओ, तो आज भी उसका लवली लवली मौसम है।
1: हाँ मम्मी, सुबह से उसने 5 पतंगे जो इकट्ठी कर ली हैं।
2: अरे भाई, किसके लिए आज मौसम लवली लवली है। अरे हमें तो सुबह से आज चाय भी नहीं मिली है।
0: मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ।
2: अरे वसुधा, जैसा कि तुमने कहा, मैंने बगीचे का सारा कबाड़ आज साफ कर दिया है। पिछले हफ्ते तो सुबह सुबह ही इतनी गर्मी हो गई थी कि कुछ भी काम करने का मन नहीं किया। तो अब चाय।
0: ओ,
1: तो मानव की तरह आप भी आज खुश हैं।
2: अरे भाई, मौसम ही ऐसा है बेटा।
1: लवली लवली।
3: मानव, आज तो मानव बड़ा खुश है। क्या बात है मानव, ये 5 पतंगों की करामात है।
2: नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये मौसम की करामात है। अब मैं बगीचे की सफाई करने की 1 महीने से सोच रहा था, पर मूड नहीं बन रहा था। और आज सुबह सुबह ही उठकर मैंने देखा मौसम इतना बढ़िया है, तो सारा बगीचा भी साफ कर दिया।
0: अरे वाह, कीजिए आपकी चाय।
2: थैंक यू, यू आर सो स्वीट वसुधा।
0: हाय आप।
2: अरे वाह वाह वाह, आज देखो आपकी मम्मी भी बहुत खुश लग रही है। कल कैसे गुस्सा हो रही थी।
3: अरे पापा, कल आपने देखा ही होगा कि कितनी गर्मी थी, ऊपर से बिजली नहीं। ऐसी गर्मी में आपको चूल्हे के सामने खड़ा होकर खाना बनाना पड़े तो क्या होगा।
2: हाँ वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये मौसम हमारे तन मन भावनाओं सबको प्रेरित करता है।
1: आखिर ये मौसम है क्या भला।
0: पापा के मूड की तरह, वो जब अच्छा होता है तो कई दिनों तक अच्छा रहता है, और खराब हो जाए तो कई दिनों तक खराब रहता है।
1: तब तो मम्मी का मूड मौसम है और पापा का जलवायु।
2: मुझे क्यों बतीत रहे भाई। वैसे एक तरीके से तुम बच्चे ठीक ही कह रहे हो। जब मौसम बदलता है तो लोगों का मूड बदलता ही है, पर मौसम इतिहास भी बदल देता है।
3: वो कैसे।
2: बच्चों, भारत का इतिहास गवाह है कि शेरशाह ने हुमायूं को हराने में मौसम की भी भरपूर मदद ली थी।
0: और जानते हो बच्चों, हुमायूं ने शेरशाह के बिहार के विद्रोह को दबाने के लिए आक्रमण किया, तो शेरशाह बंगाल की ओर भागता रहा। उसके पीछे हुमायूं भी बंगाल आ गया, तब वहाँ वर्षा हो रही थी।
2: हाँ, और गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आने से दिल्ली जाने के सभी रास्ते बंद हो गए।
3: अच्छा।
2: पर हुमायूं वहीं डेरा जमाए रहा, और तब शेरशाह अपनी मांद से निकला और उसने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं को हार का मुंह देखना पड़ा, खुद भी अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पाया। अरे सब जानते हैं कि वो गंगा में कूद पड़ा और एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई।
1: पापा, मैंने सुना है भोपाल में 2 और 3 दिसंबर को एक कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव से 2,500 व्यक्तियों की मौत हो गई थी।
2: हाँ बेटा। हाँ।
1: कुछ विशेषज्ञों का विचार है, उस रात अगर वर्षा होती या तेज हवाएं चलती तो जहरीली गैस या तो पानी में घुल जाती या हवा उसे दूर ले जाती, जिससे उसके प्रभाव अधिक क्षेत्र पर तो होते परंतु इतने घातक नहीं होते।
2: बिल्कुल।
1: और ठंडे मौसम में तो कोहरे के कारण सड़क पर दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती है ना पापा।
2: हाँ मानव, पता है एक बार 1952 में लंदन को कोहरे की मोटी मोटी परतों ने ढक लिया और 4 दिन तक ढके रहा।
3: अच्छा।
2: हाँ, और जब कोहरा छटा तो 4,000 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी थी।
1: पापा, आप तो बुरे मौसम की बातें करके मुझे भी डरा रहे हैं। आज तो मौसम कितना लवली लवली है।
0: मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ये मौसम बदले इससे पहले पिकनिक पर निकल चलो।
2: एक मिनट, पहले पूछ तो लो मुझसे।
1: बोलो ना पापा।
2: तो चलो ना भाई।
4: देखो सूर्य प्रकाश, नदी के इस किनारे को हमने पिछले 3 साल में कैसे एक पिकनिक स्थल में बदल दिया है।
2: भाई सुंदर तो बहुत लग रहा है भैया, तुमने सब कुछ कमाल कर दिया भैया।
1: नमस्ते
4: नमस्ते बच्चों, नमस्ते।
2: बच्चों, ये है मेरे बचपन के दोस्त डॉक्टर अनुराग।
4: एक बार फिर नमस्ते बच्चों। आओ बच्चों, देखो यहाँ हमने छोटी छोटी कॉटेजेस बना दी है।
2: बड़ी सुंदर है।
4: चलो पहले तुम्हें दिखाऊं कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं।
3: हाँ, आओ बच्चे, आओ, आओ, आओ, मैंने सामान गाड़ी से उतार कर कॉटेज में रख दिया है।
2: तो ठीक है ठीक है ठीक है। और अरे सुनो, अरे वो पकौड़े तो देते जाओ जो तुम घर से बनवा के लाए हो।
5: वो तो मैंने हजम कर दिए
2: रास्ते में।
1: और हजम करके ये कागज और एल्यूमिनियम की पन्नी और खाली पानी की बोतल भी यही फेंक दी।
0: मानव कब अपने आप को बदलोगे?
5: मम्मी
0: देखो यहाँ सब जगह कितनी साफ है, हर जगह हरी भरी है, पास में नदी बह रही है। अगर इस जगह पर सभी तुम्हारी तरह कूड़ा फेंकने लगे तो शाम तक ये सुंदर जगह कूड़ेदान बन जाएगी।
4: अरे भाभी जी, मानव को डांटिए नहीं। देखो माना बेटा, वहाँ सामने दो कूड़ेदान रखे हैं।
3: तो उठाओ ये कूड़ा और डाल दो नीले वाले में ये प्लास्टिक की बोतल और अल्मोनियम की पन्नी, और कागज हरे वाले में। चल जा फटाफट। अच्छा। जा
6: मानव, मैं आ गया। अरे मानव, आज यहाँ की सफाई का काम तुमने ले लिया है क्या?
5: अरे गौरव, तू यहाँ? लगता है विवेक भैया ने तुझे पहले ही फोन कर दिया होगा।
6: हाँ हाँ, विवेक भैया ने मुझे पहले ही फोन कर दिया था।
5: गौरव देखो, ये मानव अपनी आदतें बदलता ही नहीं है।
6: सृष्टि दीदी, मानव हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पर कभी कभी भूल कर बैठता है।
3: कभी कभी
6: पर मानव, मैंने सुना है कि आज तुमने 5 पतंगे लूटी है। That's great.
3: गौरव कुछ भी कहो, पतंग लूटने का तो मजा ही कुछ और है।
6: और ऐसी खुली हवा में पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और है। भैया यहाँ जगह भी कितनी खुली खुली है ना।
5: सच गौरव, पतंग उड़ाने में मजा आएगा, इसीलिए मैं सारी पतंगे और डोर भी ले आया हूँ।
4: बच्चों पतंग बाद में उड़ाना, पहले कुछ नाश्ता कर लो।
5: नाश्ता?
4: और चाय नाश्ते के बाद मैं तुम्हें यहाँ के वातावरण से अवगत करा दूंगा।
2: वैसे अनुराग, यहाँ तो पूरा वातावरण ही बदल गया है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। ओ, कई पक्षी भी दिख रहे हैं।
4: हाँ भाई, हम इसे एक जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम इस स्थान को एक ऐसे पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं जहाँ लोगों को प्रकृति का नजारा देखने को तो मिले, साथ ही साथ अपने आसपास के वातावरण को भी समझ सके।
3: डॉक्टर अंकल, मैंने सुना है आपके यहाँ मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने के यंत्र भी हैं।
4: ठीक सुना तुमने विवेक, ये सभी उपकरण यहाँ लगे हैं। मौसम विभाग के कर्मचारी भी यहाँ दिन में एक बार आते हैं।
2: तब तो तुम्हें भी मौसम विज्ञान की काफी जानकारी हो गई होगी।
4: हाँ भाई, मैं भी एक शौकिया मौसम वैज्ञानिक हूँ। यहाँ मैं भी आंकड़े इकट्ठे करता हूँ और उनके आधार पर आने वाले मौसम का अनुमान लगाने की कोशिश करता हूँ।
5: यहाँ भी मौसम की बात। अच्छा अंकल, मौसम अच्छा कब और कैसे होता है ये तो मुझे पता चल गया, पर खराब कब होता है?
4: बेटे मौसम कई तरह के होते हैं, जैसे ठंडा या गर्म, सूखा या नम, सुहाना या तूफानी, वगैरह वगैरह। परंतु हर मौसम बनता है विभिन्न कारकों की आपसी जटिल क्रियाओं से,
5: और जिनमें शामिल है हवा की गति, दबाव, तापमान, बादलों की उपस्थिति, नमी, हवा।
0: बस बस बस मानव, करने लगा परेशान तू अपने अंकल को। हाँ?
4: अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा तो ये शौक है और मुझे ऐसे सवालों का जवाब देना अच्छा लगता है।
1: अगर मैं कहूँ कि वायुमंडल की स्थिति ही मौसम का निर्माण करती है तो क्या ये सही होगा भैया?
3: सृष्टि, बिल्कुल ठीक होगा। मौसम से संबंधित सभी क्रियाएं तो वायुमंडल की निचली परत यानी क्षोभमंडल में ही होती हैं, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 10 किलोमीटर है और जो ध्रुवों पर और पतली हो जाती है।
4: ठीक कहा तुमने विवेक। अगर देखा जाए तो मौसम के निर्माण में 3 मुख्य कारक हैं।
5: कौन कौन से?
4: सूर्य, हवा और पानी।
5: अंकल, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मौसम जैसा आज है वैसा हमेशा बना रहे, यानी लवली लवली।
4: लवली लवली यानी?
5: देखो अंकल, आज सबका मूड कितना अच्छा है और सब खुश भी है। पापा मुझे पढ़ने को भी नहीं कह रहे हैं और आज मम्मी भी घर का काम छोड़कर हमारे साथ आ गई है। क्यों, हुआ ना मौसम लवली लवली?
2: बेटा बेटा, कहीं मौसम एक जैसा नहीं रह सकता, ये कब बदल जाए इसका भी पता नहीं होता। किताब लाए हो साथ में?
5: पापा।
6: हाँ अंकल, तभी एक मौसम वैज्ञानिक ने कहा है, तितली के अर्जेंटीना में पंख फड़फड़ाने से ध्रुवों पर हिमखंड गिरने लगते हैं।
4: बेटे, इस उदाहरण से वो ये कहना चाहते हैं कि मौसम के निर्धारण की प्रक्रिया कितनी जटिल है, एक छोटी सी घटना कालांतर में किस तरह मौसम को बड़े रूप में प्रभावित करेगी कहा नहीं जा सकता।
3: यानी अभी मौसम के बनने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए।
4: कुछ ऐसा ही समझो।
5: पर अंकल, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। मौसम बनता और बिगड़ता कैसे है?
4: अरे बेटे, पृथ्वी पर मौसम परिणाम है तापमानों के अंतर का।
5: तापमान में अंतर?
4: हाँ बच्चों, और तापमान में अंतर इस बात पर निर्भर है कि पृथ्वी पर किसी स्थान को सूर्य से प्रति यूनिट कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है।
1: तब तो भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों को सबसे ज्यादा ऊष्मा मिलती होगी।
4: लेकिन वहाँ भी सारे क्षेत्र एक जैसे गर्म नहीं होते। भूमध्य रेखा पर सारे क्षेत्र में भूमि नहीं है, वहाँ समुद्र भी है।
3: और समुद्र थल की अपेक्षा कम गर्म होते हैं।
4: हाँ।
3: पर अधिक ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य की रोशनी समुद्र में 600 मीटर तक जा सकती है, पर थल पर केवल कुछ मीटर तक ही।
1: पर थल तो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म,
5: और पानी ना तो जल्दी गर्म होता है और ना जल्दी ठंडा।
4: तभी जितना तापमानों में अंतर थल पर होता है समुद्रों में नहीं।
2: हाँ भाई, साइबेरिया में तापमान -46 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, परंतु समुद्र में कहीं भी इतना कम तापमान नहीं होता।
5: यानी समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए हमेशा मौसम लवली लवली। अरे वाह पापा, हमें भी अपना घर समुद्र में ही बना लेना चाहिए, तब आपका मूड भी हमेशा ठीक रहेगा।
4: सूर्य प्रकाश
3: बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा अंकल, अगर मैं कहूँ कि मौसम को सुहाना और खराब करने में हवा का बड़ा हाथ है, तो क्या ये सही होगा?
4: हाँ, क्योंकि वैसे तो मौसम के निर्माण से जुड़े कई कारण अभी भी ठीक ठीक समझे नहीं गए हैं, परंतु हवा एक मुख्य कारक है।
3: अच्छा,
6: तो क्या स्थायी हवाएं जैसे ट्रेड विंड और अस्थायी व स्थानीय हवाओं का मौसम से गहरा संबंध है?
4: बिल्कुल है बेटे, परंतु इसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर जो वायुमंडल के विभिन्न संचरण है उन्हें समझना होगा।
5: लेकिन अगर सबका पेट खाली होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा।
2: हाँ,
5: वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए।
2: आ गया है, आ गया है। अच्छा जाओ, अच्छा जाओ, अपनी मम्मी का हाथ बटवाओ, जाओ जाओ, वो तैयारी कराओ, जाओ जल्दी।
4: सचमुच मजा आ गया खाने का,
5: पर हमें तो पतंग उड़ाने का मजा ही नहीं आया।
4: क्यों?
6: अरे मानव, पहले हवाओं के बारे में समझ तो लो, फिर उसी हिसाब से पतंग उड़ाना।
4: भाई ऐसी हवाएं जो हमारे मौसम को प्रभावित करती हैं, उन्हें हम तीन वर्गों में रख सकते हैं।
5: कौन कौन सी अंकल?
4: भाई ऐसी हवाएं जिनका संचार पूरे पृथ्वी ग्रह को प्रभावित करता है।
6: कहीं आप ट्रेड विंड यानी व्यापारिक हवाओं की बात तो नहीं कर रहे हैं?
4: हाँ गौरव बेटे, तुमने पृथ्वी का नक्शा तो देखा होगा, है ना? उस पर एक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है,
5: उसे भूमध्य रेखा कहते हैं।
4: हाँ।
5: इस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।
3: बिल्कुल ठीक मानव, और ये क्षेत्र हमेशा गर्म और नम रहते हैं, और यहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है।
4: ठीक कहा तुमने विवेक, पर क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है?
6: अंकल मैं बताऊँ? क्योंकि अंकल यहाँ पर थल और जल दोनों ज्यादा है और दोनों ही गर्म हो जाते हैं।
4: बिल्कुल ठीक, और इस कारण इस क्षेत्र पर जो वायु जल और थल के संपर्क में आती है वो भी गर्म हो जाती है,
5: और गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है,
4: और ऊपर उठने से वो पुनः ठंडी हो जाती है, और उसमें उपस्थित वाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है, और इस क्षेत्र में लगभग पूरे साल वर्षा होती रहती है और मौसम नम बना रहता है।
6: तब तो अंकल नीचे यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता होगा।
1: और इस कम दबाव वाले क्षेत्र को भरने के लिए ठंडी हवा उच्च दबाव क्षेत्र से यहाँ पहुँचती होगी, क्योंकि हवा अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर गति करती है,
4: और इसी को हम हवा यानी विंड कहते हैं, और ये पवन यानी कि हवा विश्वव्यापी भी हो सकती है, और जैसे व्यापारिक पवने और स्थानीय भी, जैसे जल और थल समीर, है ना?
6: यानी मौसम के मिजाज का पता करना है तो वायुमंडल के दाब का पता कर लो।
4: हाँ बेटे, और जो हवा जिस दिशा से आ रही है उसी

0: के अनुसार मौसम ठंडा, गर्म, शुष्क या नम होगा।
1: अरे तभी तो हवाओं को उनकी आने की दिशाओं से ही जाना जाता है, जैसे पूर्वा या पछवा।
2: हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी भी मुझे बताती थी कि पूर्वा हवाएं ठंडी और शुष्क होती हैं और पछवा गर्म तो होती है पर वो शुष्क भी हो सकती हैं और नम भी हो सकती हैं।
3: तब तो अंकल, हमें यदि ये पता हो कि पृथ्वी पर कहाँ कहाँ उच्च या निम्न दाब क्षेत्र हैं, तो हम वहाँ के मौसम के बारे में कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
4: पर उच्च और निम्न दाब क्षेत्र से मौसम का क्या संबंध?
5: अरे भाई माना, मौसम का मतलब वायुमंडल में हलचल, और हलचल तो तभी होगी जब किसी स्थान पर वायु दाब में अंतर हो।
3: हाँ विवेक भैया, दाब में अंतर होने पर हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेंगी।
0: बच्चों, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों से हवाएं ऊपर उठकर ध्रुवों की ओर यानी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की तरफ बहेंगी, और ध्रुवों पर जहां उच्च दाब है वहां से हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ बहेंगी।
1: परंतु ऐसा होता नहीं है।
2: क्यों?
1: क्योंकि भूमध्य रेखा पर हर जगह सूर्य की ऊर्जा अलग अलग मिलती है, और फिर कहीं पानी है तो कहीं जमीन, जो सूर्य की ऊष्मा अलग अलग मात्रा में अवशोषित करते हैं। इसके अलावा रात और दिन आदि कई कारक हैं, और इन सबसे एक और बड़ा कारक है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जो हवाओं पर कोरियोलिस प्रभाव पैदा करता है, जिससे हवाएं अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता बदल लेती हैं, यानी उसकी दिशाओं में परिवर्तन आ जाता है।
3: तो क्या वे गर्म हवाएं ध्रुवों तक नहीं पहुँचती?
0: पहुँची तो है बेटे, परंतु बड़ी जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद।
4: जटिल प्रक्रिया मतलब?
1: देखो भाई, भूमध्य रेखा पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है, और 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के पास कुछ हवा नीचे उतर जाती है। यहाँ उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है, परंतु इसकी सारी नमी पहले ही समाप्त हो जाती है, इसलिए इन कम दबाव के क्षेत्रों में मौसम तो शांत होता है परंतु वर्षा कम या बिल्कुल नहीं होती।
4: शायद तभी अमेरिका का दक्षिण पश्चिम इलाका तथा अफ्रीका का सहारा क्षेत्र कम दबाव क्षेत्र में आता है।
5: मानव, इस बेल्ट को जो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर उत्तर और दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है, उसे अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। इस अक्षांश पर शेष हवाएं दो भागों में बंट जाती हैं, एक भूमध्य रेखा की ओर चली जाती है और दूसरी ध्रुवों की ओर।
3: जो हवा अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर वापस आती है, उन्हें व्यापारी हवाएं यानी ट्रेड विंड्स कहते हैं।
5: बिल्कुल ठीक दृष्टि। इन हवाओं को व्यापारी हवाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यूरोप के जहाज इन हवाओं के सहारे यात्रा किया करते थे।
0: हाँ बेटे, व्यापारी हवाएं भूमध्य रेखा पर पहुँचने पर एक संवहन चक्र पूरा कर लेती है। इस भूमध्य रेखिक संवहन चक्र को मौसम वैज्ञानिक जॉर्ज हेडले के सम्मान में हेडले चक्र कहा जाता है।
3: पापा, भूमध्य रेखा से क्या सभी हवाएं अश्व अक्षांश क्षेत्र तक सीमित हो जाती हैं?
1: नहीं बेटा नहीं, भूमध्य रेखा से कुछ हवाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों तक पहुंच जाती हैं, और भूमध्य रेखा से आई इन हवाओं को पश्चिमी पवन या प्रतिकूल व्यापारी पवन कहा जाता है।
5: और प्रतिकूल व्यापारी हवा मतलब इनकी दिशा व्यापारी हवा के विपरीत होती है।
3: शायद इन हवाओं का कोई व्यापार करने नहीं आया होगा।
0: व्यापार ना सही, लेकिन इनकी गति काफी तेज और स्थायी हवाओं में सबसे अधिक होती है।
2: तेज तो अंकल हमारा मानव भी है, लेकिन वो गति में नहीं खाने में तेज है।
4: हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुझे भूख भी लगाई है।
0: अच्छा। लो बेटा, तुम सेब खाओ।
5: अंकल, सेब तो हम भी खाएंगे।
0: अच्छा बच्चो, तुम सब सेब लो, ये लो, ये लो।
1: मैं बच गया भाई।
3: अंकल, मैंने एक पत्रिका में हवाओं के कुछ विचित्र नाम 50-40 सही से याद नहीं आ रहा, पढ़े तो थे।
5: सृष्टि, मैं बताता हूँ, कहीं तुमने गरजती 40, भयानक 50 और चीखते 60 तो नहीं पढ़े थे?
2: हाँ हाँ भैया, मैंने यही नाम पढ़े थे।
4: लेकिन भैया, ये कैसे विचित्र नाम है?
5: मानव घबराओ नहीं, मैं बताता हूँ। जब पश्चिमी पवन तीव्र गति से बहती हुई 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बनी रहती है, तो इसे गरजती 40 या रोरिंग 40 कहते हैं।
6: लेकिन हवाओं के अन्य नाम कैसे पड़े?
5: पापा आप ही बता दो।
1: अरे बेटा, जब ये पवन 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है तो इसे भयानक 50, फ्यूरियस 50, और 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच होने पर इसे चीखते साठा स्क्रीमिंग 60s कहा जाता है।
3: मुझे तो पता ही नहीं था कि पवन चीखती भी है।
4: अगर हाँ आपने जल और थल समीर को स्थाई पवन बताया था ना?
0: हाँ मानव, जल और थल के ऊष्माधारिता गुण में भिन्नता के कारण दिन में पवन जल से थल की ओर तथा रात में थल से जल की तरफ चलती है।
6: इसका मतलब है कि दिन में गर्मी से जल के ऊपर दाब की मात्रा थल के दाब से अधिक होती है
3: और रात में थल के ऊपर अधिक दाब होता है और जल के ऊपर कम, है ना अंकल?
0: हाँ बेटी, ऐसा ही होता है।
4: लेकिन अंकल, पर्वतीय घाटियों में तो दिन और रात दोनों समय मौसम सुहाना होता है।
0: हाँ बच्चों, पर्वतीय घाटियों में सुहाने मौसम के लिए हमें आरोही और अवरोही हवाओं को धन्यवाद देना चाहिए जो वहाँ के मौसम को खुशनुमा बनाए रखती हैं।
2: आरोही और अवरोही हवाएं।
4: हाँ विवेक भैया, कहीं ये गणित के आरोही और अवरोही सिद्धांत की बात तो नहीं है?
5: मानव तू फिर से घबराने लगा।
4: बताओ ना भैया।
5: अरे नहीं, ये आरोही अवरोही तो स्थानीय पवन है।
0: हाँ बच्चों, पर्वतीय घाटियों से पवन का पर्वत की ओर अर्थात ऊपर बहती पवन आरोही पवन कहलाती है। इस प्रकार गर्म होती वायु ऊपर उठती जाती है।
3: अच्छा, इसीलिए दिन में घाटियों में ठंडक रहती है
1: और रात में पर्वत की चोटियां घाटियों की तुलना में तेजी से ठंडी होती हैं। इसीलिए रात में चोटी से ढाल की ओर बहने वाली पवन ठंडी होती है और इन्हें अवरोही पवन कहा जाता है।
0: बच्चा।
3: अंकल, अब बाहर जाकर पिकनिक का मजा भी लिया जाए।
0: हाँ,
4: और बाहर जाकर देखें कि कौन सी हवा चल रही है।
0: हाँ बच्चों, अरे हम तो बताना ही भूल गए बातों बातों में कि बाहर हमने टेंट लगा रखा है।
6: अरे मानव, चल बाहर चलकर लवली लवली मौसम का आनंद।
2: क्यों डॉक्टर साहब, बच्चों ने ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया?
4: मम्मी, हमने कोई शरारत नहीं की है।
0: भाई बच्चों की मौसम संबंधी जिज्ञासा देखकर तो मेरा मन गदगद हो गया।
3: मम्मी, हम तो लवली लवली मौसम में बाहर बातें करने आए हैं।
2: अच्छा अच्छा, बैठो बच्चों, जरा हम भी तो सुने तुम्हारी लवली लवली बातें।
6: अरे मानव, ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है।
4: अरे हाँ।
3: मानव चाहे एरोप्लेन में बैठा ना हो लेकिन उसे उड़ते हुए तो देख ही सकता है।
4: अच्छा,
6: अरे बैठना क्या, हो सकता है बड़ा होकर मानव पायलट बने। एरोप्लेन तो क्या जेट विमान भी उड़ाए।
4: अंकल, जेट विमान के बारे में सुनकर मुझे जेट प्रवाह का नाम याद आ गया।
0: बच्चों, धरती की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई पर करीब 160 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली घुमावदार पवन जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम कहलाती है।
3: ये पवन किस गोलार्ध में चलती है?
5: सृष्टि, जेट प्रवाह दोनों गोलार्ध में ही होती है।
1: हाँ, लेकिन बेटा ये प्रत्येक गोलार्ध के 20 डिग्री से 50 डिग्री पर स्थित उष्ण क्षेत्र और 30 डिग्री से 70 डिग्री के ध्रुवीय क्षेत्रों दोनों में बहती है।
6: अच्छा, तो ये जेट प्रवाह वही है ना जिनका गर्मी के दिनों में हिमालय के ऊपर की ओर सरक जाना हमारे देश में मानसून का संकेत माना जाता है।
1: बिल्कुल ठीक, मानसून भी एक तरह की स्थानीय हवा ही है जिसकी उत्पत्ति महासागरों और महाद्वीपों के ताप में अंतर से होती है।
5: पर ये कोई साधारण घटना नहीं है, मानसून तो मौसम की अनेक घटनाओं से संबंधित है।
1: हाँ, पृथ्वी का घूर्णन, पर्वत और अन्य अवरोधों से पवनों की गति मंद हो जाने से मानसून प्रभावित होता है।
4: लेकिन ये मानसून समय का पक्का नहीं है। हा? कभी 10-20 दिन पहले ही आ जाता है और कभी इतनी बाद में आता है।
6: अरे मानव, मानसून तो अप्रैल जून से ही बनने लगता है जब उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समीप गर्मी पड़ने लगती है।
3: अच्छा, जब हमारी परीक्षाएं खत्म होती हैं, तब ये मॉनसून अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है।
4: परीक्षाएं? भाई मुझे तो बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है। वो देखो, बाहर बादल छा रहे हैं और हवा भी चल रही है, पर मैं तो बाहर जा रहा हूँ।
3: अरे मानव, ये जेब में क्या लेकर जा रहे हैं बाहर, बिस्किट है क्या?
4: अरे दीदी, बिस्किट नहीं है, बिस्किट का खाली पैकेट है, ताकि बाहर जाते समय इसे कूड़ेदान में डाल दूं।
1: अरे वाह वाह वाह वाह, लगता है मानव समझदार हो गया। अब मानव कूड़े को इधर उधर न फेंकने का महत्व समझ गया है।
0: भाई ये तो एक दिन मेरे साथ रहने का नतीजा है। भाई अच्छे आदमी के साथ रहेगा तो अच्छे गुण भी सीखेगा।
1: डॉक्टर साहब, अरे हमें तो लगता है कि आप में अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का गुण आ गया है।
0: भाई कुछ भी कहो, पर मेरे लिए आज की पिकनिक मजेदार रही। क्यों बच्चों, सही कहा ना मैंने?
7: हाँ, आज की पिकनिक बड़ी मजेदार थी।
2: भाई साहब, आपने पिकनिक को मनोरंजक और शिक्षा प्रद बनाया है
3: और मानव को लवली लवली मौसम के साथ क्लीन क्लीन बॉय भी।

धरती मेरी धरती। अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी सुन रहे थे, मौसम मौसम लवली मौसम।

0: सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Shalmali।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
3: जी।
2: प्लीज कैरी ऑन।
3: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
2: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार, अगर दिखें टीबी के आसार।
3: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
2: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, मैं श्रुति कीर्ति वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर। आज मैं सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से जागरूक करने के लिए फाइलेरिया के विषय पर बात कर रही हूँ। फाइलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है, जिसे क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर यह बीमारी फैलती है। इसके लिए जो है एक पैरासाइट जिम्मेदार होता है, निमेटोड है वो, बेसिकली वाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई, जिसको ये कैरियर के रूप में मच्छर जो क्यूलेक्स काम करता है। और ये संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर ये मच्छर किसी को काटता है तो पहली बात तो ये तुरंत इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, काफ़ी सालों के बाद में, लगभग 4 से 5 साल, कभी इससे भी ज़्यादा लंबा पीरियड लग जाता है, 7 ईयर्स भी कभी कभी देखने में आया है। तो काफ़ी सालों के बाद ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। और हाथी पाँव, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पैरों में सूजन, लिम्फ नोड से प्रभावित हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस की तरह इस तरह की बीमारियां देखने में आती हैं। तो हमें करना ये है कि हमें, अगर हम जितना बच सके मच्छरों से बचाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी। जैसे डेंगू और मलेरिया का हम जागरूकता अभियान करते हैं, उसी तरह से हमें फाइलेरिया के लिए भी बचाव के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आजकल मार्केट में कॉयल्स आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि कहीं भी अगर पानी स्टोर है तो अपने घरों के आसपास, अगर आप अपने घर में भी साफ़ सफाई रखते हैं, पानी कहीं भी जमा ना होने दें। ये हमें विशेष रूप से इस तरह की सावधानी लेकर के चलनी है। बेसिकली पाया ये जाता है कि जैसे बारिश स्टार्ट होती है और हमारा मलेरिया विभाग, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी, हमारा पूरा प्रशासन और ख़ास करके हमारा पूरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा होता है सड़कों पर, घरों के आसपास, छत के ऊपर, कई बार कंटेनर्स, खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें, बहुत छोटे छोटे जो हमारे स्थान होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो हमें ऐसे पानी को वहाँ से निकालना है। और अगर ऐसा पानी अगर हम नहीं निकाल सकते हैं तो वहाँ पर हमें एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाना है। तो नगर निगम, हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन सब चीज़ों पर सक्रिय रहते हैं। मलेरिया विभाग भी लगातार छिड़काव

0: और फॉगिंग की व्यवस्था भी करता है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इन जगहों पर हम डीजल और केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जला हुआ मोबिल ऑयल ऑयल और जला हुआ डीजल का भी प्रयोग करके हम लार्वा को रोक सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि चाहे डेंगू का एडीज मच्छर हो, मलेरिया का एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, हमें इनकी ब्रीडिंग ही स्टॉप करके हम बीमारियों के संक्रमण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन मां के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। मां कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी है और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in। The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
6: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
5: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
7: हाँ माँ जी।
8: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
9: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
11: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है, इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान, कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सब का ध्यान। देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: वो सारी

0: गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगो कर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छान कर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसे, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ के स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कूष्मांडा देवी तेज की देवी हैं और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hi Priya, tum itni tension mein kyun ho? Aakhir hua kya tumhe?
2: Rohan, ab kya batau? Itne sare course hai, samajh nahi aa raha bachelor's mein admission kahan lu?
1: Acha Priya, ye batao ki tumhe life mein karna kya hai?
2: Mujhe main chahti hu meri awaaz puri duniya mein goonje. मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ. मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ. मैं चाहती हूँ.
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो. तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो.
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा.
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें.
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है.
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है.
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है. तो आज ही विजिट करें Sharda University के Sharda School of Media, Film and Entertainment Department में. यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
3: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90

0: 98 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं अरुण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
0: The world is here.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो, तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सर पर भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हरदम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
2: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए। पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
3: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
4: शारदा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। अब सरकार द्वारा सभी RNTCP नोटिफाइड टीबी मरीजों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध है। इलाज के समाप्ति तक हर मरीज को प्रति महीने 500 रुपए उपलब्ध किए जाएंगे। इससे मरीजों की नोटिफिकेशन, इलाज अनुपालन, सही पोषण और इलाज के अंतर्गत होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
5: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
6: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।